गीता की आवाज में हमने यहाँ से और सुने हैं। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप चुने हैं। Het perfecte leven bestaat niet. Het perfecte leven bestaat niet, maar we kunnen het vullen met

यादों के सहारे जी रहा हूं, क्योंकि तू ही है आशिकी, तू ही है बंदगी। कभी सोचा ही नहीं था कि तेरे बिना भी जीनी पड़ेगी जिंदगी।

देखना, आज मेरा हाल नहीं पूछते हो, आज मेरा हाल नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछूंगी कि उसे हुआ क्या था। भीड़ में सभी लोगों के सिर दिखाई देते हैं, भीड़ में सभी लोगों के सिर दिखाई देते हैं, अगर दिमाग दिखाई देता तो भीड़ नहीं होता।

शीश कूल करने की आवाज़ में हम सुने, बस तेरे हो गए तेरे, बस तेरे हम हो गए, आशीष कुल करने की आवाज़ में हमने सुने। अब कौन रोज़ रोज़ खुदा ढूंढे, जिसको ना मिले वही ढूंढे। रात आई है सुबह भी होगी, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। जिंदगी है जी, जिंदगी है जी, खुल कर जियो, रोज रोज क्यों जीने की वजह ढूंढे। चलते फिरते पत्थरों के शहर में, चलते फिरते पत्थरों के शहर में, पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। धरती को जन्नत बनाना है अगर, धरती को जन्नत बनाना है अगर, हर शख्स खुद में पहले।

आशिकी ने मारा तू है जिंदगी मेरी। इस बार हमने सुने अमरजीत की आवाज में और अमरजीत जी की आवाज में। याद करोगे एक दिन, याद करोगे एक दिन मुझे ये सोच कर कि क्यों नहीं कदर की मैंने उसके प्यार की।

दास्ताने और हिमेश रेशमिया के साज और संगीत पर ये गीत हमने सुने हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते हैं।

0: राजेश्री भाग, राजेश्री भाग की आवाज में हमने यहाँ से और सुने हैं। मन और मकान को समय समय पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां भर जाती है। Vroeger keek ik uit het raam en droomde over later. Nu kijk ik uit hetzelfde raam en droom ik over vroeger.
1: मोहब्बत में जज्बात दिखाए नहीं जाते, जताए जाते हैं। इश्क के वादे बताए नहीं जाते, निभाए जाते हैं।

रब्बा की करा हमको सुनाए हम देखे तो। जी हाँ, वही अपकॉमन न्यूज सिंगर सनी हिंदुस्तानी। जी हाँ, ये शख्स का नाम है सनी हिंदुस्तानी।

यहाँ से हम आपके लिए कुछ मिले जुले गीत चुन कर रखी हूँ सुनने वालों, और जरूर से इसे आप सुने और पसंद करें। तो बढ़ चलते हैं सुनने के लिए पहले जोबिन नौटियाल जी की आवाज़ में एक रोमांटिक सॉन्ग।

लगी है तू, ये बात मैं दावा के साथ कह सकती हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मुझसा ना कोई है और ना कोई होगा। और ये बात भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हाँ कि आपसा, हाँ जी आपसा ना कोई है और ना आगे में कोई होगा। एक बार फिर जो बेन नौतियाल की आवाज़ में।

जी हाँ, रात तक कट गए, सुबह हो गए और यहाँ पर हम भी रात के बाद सुबह आते हैं, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद रात फिर हो जाते हैं।

भी एक सुंदर शब्द है कि जहाँ जिसका दाना रहता है जहाँ जिसका दाना रहता है समय उसे वहाँ बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। इस बार हम सुनेंगे, देखे तो अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में। कि चलने लगी है हवाएं

अभिजीत भट्टाचार्य के आवाज में हम यहाँ और मिलकर सुने हैं। कितनी खूबसूरत से गाए हैं कि चलने लगी है हवाएं, वाकई में हवाएं भी चल रहा है। और हमारे इंस्ट्रूमेंटल को क्या हुआ, आ गए। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल तो आ गया, सुनो वालो। लाइन के शब्द हैं यहाँ पर, कितनी उसमें बातें हैं जो हमको छू जाते हैं और वो भी हमको भी ज्ञान की रोशनी भी दे देते हैं। तो ऐसे दो लाइन के ये लिखा हुआ है कि अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें। अपने अंदर से अहंकार को निकाल कर स्वयं को, स्वयं यानी कि सेल्फ, सिक्स सेल्फ, अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है।

घबराएंगे, क्या बात है। जिंदगी आईने की तरह, जिंदगी आईने की तरह है, आईना यानी कि स्पीकर, शीशा। जिंदगी आईने की तरह है, ये मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे।

यहाँ से एक बार फिर हम और आप सुनेंगे कुमार शानू की आवाज़ में, कुमार दा की आवाज़ में। चुन से तो मालूम हो गया कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊं।

आर्टिस्ट गीत जो कुमार शानू जी ने हम को सुनाए हैं कि इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगी।

उसके इश्क की खनक, उसके इश्क की खनक मेरी चूड़ियों में खनकती है। उसके एहसासों की महक, उसके एहसासों की महक मेरे रूह में महकती है। चाहे कितना ही छिपा लूं, चाहे कितना ही छिपा लूं, आँखों में कहानियाँ झलकती है।

से आपको हम एक बार फिर लेकर चलते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुनने के लिए, और क्या ये फरमाएगा तो हम यहाँ साथ में मिलकर सुनेंगे। मेरी को भी खबर नहीं है।

कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, कुछ लम्हों की ज़िंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की जैसे। हाँ सुनने वालों दोस्तों भाई बहनों, जी लो इस लम्हों को खुश नसीबों की जैसे।

देखकर जी रहे हैं सभी। रफ़ी जी की आवाज़ में यहाँ से हमको सुनाए आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में।

0: आपकी हर बात रहेगी, दिल में आपकी हर बात रहेगी। जगह छोटी है, जगह छोटी है, मगर आप बात जरूर रहेगी।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को

जी, इतना सुंदर सा गीत हमको सुना है किशोरदा और लता जी। सुनने वालों, जाने कैसे कब कहाँ क्या हो जाता है पता नहीं, पर ये जरूर कहूंगी चाहे हम भुला दो जमाने को बल्कि आपके प्यारे मुस्कान को हमेशा हम याद रखेंगे।

एक दिल ही तो था जो सिर्फ हमारा था। सुनिए जी, एक दिल ही तो था जो सिर्फ हमारा था, बातों बातों में उन्होंने इसे भी चुरा लिया।

0: प्यार भरे गीत आपके लिए यहाँ से चलाया जाता है सुनने वालों। कहते हैं कि प्यार चाहे परफेक्ट हो या ना हो, पर सच्चा जरूर होना चाहिए। वो लफ्ज बने ही नहीं जो बयां करे कि मुझे कितना मोहब्बत है तुमसे।
1: पता है वो बहुत ही

हाँ, तो आपने सुने ये सुंदर सा गीत, जिससे सोच कर ही चेहरे पर खुशी आ जाए, वो खूबसूरत एहसास हो तुम। और कहते हैं कि सिर्फ दो ही चीजों से डर लगता है, एक तेरा रोना और दूसरा तुझे खोना।

किशोरदा और लता जी की आवाज़ में यहाँ से हमने एक बार फिर सुने कि अब के सावन में तुम्हें दिल में कई बार याद करता हूँ, तुम्हें दिल में कई बार याद करता हूँ, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बस तुम चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, ये मत पूछो क्यों चाहिए।

फिल्म बरसात की एक रात से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है। तेरी तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है, पहले नहीं पहले नहीं अब सोचने लगा है कि हम की जिंदगी की हर लम्हे में तेरी ज़रूरत सी लगती है।

सोनू निगम जी की आवाज में हमने सुने सुने वालों सुंदर सा गीत है। जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, जैसे जैसे आपका नाम ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज़ हमेशा सिक्के के करते हैं, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, सिक्के यानी कि मंद खल्त, आवाज़ हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं, सुना हमने और नहीं देखा।

श्रिया घोषाल और उदित नारायण जी की आवाज में हमने यहाँ से सुने सुंदर सा गीत। सुनने वालों, एक उम्र होती है जब सिर्फ रूप रंग महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और आगे में सुनने वालों, एक उम्र के बाद सिर्फ सात महत्वपूर्ण होता है। एक उम्र होती है जहां पर रंग और रूप महत्वपूर्ण होता है, और फिर एक उम्र होती है जहां पर विचार महत्वपूर्ण होता है, फिर आगे में एक उम्र आता है ऐसे कि जहाँ पर सिर्फ सात रहने के सात महत्वपूर्ण देता है।

मोहम्मद अजीज अलका यज्ञिक जी और साथ दे रहे थे विनोद राठौड़। ये सब मिलकर हमके सुनाए कभी खुशियों की सरगम लिखेंगे।

कहते कि अच्छे कर्म अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जैसे सूरज उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। आपको हम यहाँ से साथ लेकर चलते हैं आपके ज़्यादा ना वक्त लेते हुए।

लक्ष्मीकंत और आनंद बख्शी के साथ संगीत पर जो हमने सुने कविता कृष्णमूर्ति जी, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज जी से। अंधेरे में छाया, अंधेरे में साया, यानी कि हचखादियू, अंधेरे में साया और बुढ़ापा में काया हतलेखा, और अंतिम समय में माया हत मतरियल, किसी का साथ नहीं देता। एक बार फिर, अंधेरे में छाया, बुढ़ापा में काया, और अंतिम समय में माया किसी का साथ नहीं देता।

उदास ना हो ऐ जिंदगी, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। जी हाँ, उदास ना हो ऐ जिंदगी, हम तो हर हाल में तुमसे खुश रहते हैं। कभी धूप अंधेरे में भी, कभी धूप अंधेरे में भी जुगनों की तरह पल भर की रोशनी में जीने के जुनून रखते हैं।

लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ज़रा सुनिए जी। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन बस भूल जाएंगे। इसलिए, जी हाँ, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित है, जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना, जी हाँ याद रखना, कि ये ज़िंदगी हमारी है, लोगों की नहीं।

ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। मोहब्बत तो बस एक एहसास है, जिसे हो जाए बस वही खास है। और कहते हैं जिनके मन का भाव सच्चे होते हैं, उनके हर काम अच्छे होते हैं।

साथियों, आपके जीवन की हर सुबह आप पर आशीर्वाद बरसाए, आपको एक खूबसूरत और यादगार दिन की शुभकामनाएं, यही मेरी विनती है परमात्मा से। और मित्रों, दुखों से भरी इस दुनिया में वास्तविक संपत्ति धन नहीं, संतुष्टता है। अगर आप संतुष्ट रहना सीख लोगे मित्रों, फिर आप इस जीवन की यात्रा को आसान से पार कर जाओगे, अन्यथा हमेशा शिकायत करते रहेंगे। तो अब क्या करना चाहिए आपको? भाई बहनों, व्यक्ति को महावीर तभी कहा जा सकता है जब वो विकट परिस्थितियों का हंसी खुशी से सामना करता है, और ना कि जैसे एक बाल्टी पानी उठा लिया तो वो महावीर बन गया। मुश्किल से मुश्किल काम को सही तरीका से पार कर जाए तभी वो महावीर है मित्रों, तभी आप महावीर हैं।

मित्रों, ईमानदार वे सच्चा दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का और तनाव मुक्त अनुभव करता है, और ना कि जैसे आप हैं धोखाधारी, ईर्ष्यालु, बेईमान इत्यादि इत्यादि। अच्छा अच्छा, आप ऐसे नहीं हैं, तब तो ये बात बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है ये। इसी तरह आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और भाई बहनों, अपने दुखों को भूलने के लिए परमात्मा को याद करो, न कि इधर उधर देखभाल कराओ या किसी ने जादू कर दिया होगा। इसी तरह आप सोचते रहेंगे, आपको सोच विचार आपको और दुखी कर देगा। मित्रों, तो बचा एक ही रास्ता, आप अपने धर्म के अनुसार अपनी परमात्मा से सच्चे मन से और पूरी विश्वास के साथ बात करना, फिर देखना वो आपके लिए क्या करता है। मित्रों, क्या करेंगे परमात्मा आपके लिए।

साथियों, आप अपने मन को स्थिर रखकर सभी परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और घबराने से आपका मन और भी विचलित हो जाएगी। इसलिए 4-5 बार लंबी लंबी सांस लेना और शांत हो जाइए। विकट समस्याओं का आसान हल ढूंढ निकालना मित्रों सबसे मुश्किल काम है। इसलिए खुद में विश्वास रखो और परमात्मा में भरोसा करना, सब आसान लगने लगेगा मित्रों, सब आसान लगने लगेगा।

जब तक संसार शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं मिट जाता, तब तक जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों नहीं मिट सकता।

मेरे मन की हो जाए, इसी को कामना कहते हैं। ये कामना ही दुख का कारण है, इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता।

शिखरटुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम तिक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ जुड़ गए हूँ। मेरा नाम संजय है।

सभी जो बीमार है पीड़ित है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि भगवान शक्ति देवे और स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है और जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने नौकरी के ओर के लिए तो उनको ये कहना चाहूँगा कि ये मत भूलना जो महात्मा गांधी जी ने हमें सुनाए थे कि ये मत समझ कि हमारा जो देश है वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ये सिद्धांत जो छोटा शब्दों में महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ जो इस समय तैयार कर रहे स्कूल जाने के लिए तो उनसे कहूंगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं क्योंकि वही बुद्धि और ज्ञान का भंडार देने वाले हैं। जो अभी सफर पे निकलने वाले हैं तो जरूर ये कहना चाहूंगा कि सफर के लिए समय पे उपस्थित हो जाना। जो हमारे देश में सफर से आए हैं उनको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और ये कहना चाहूंगा कि देशों में एक देश ऐसा है हॉलैंड जिसे हम स्वर्ग को भी कह सकते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है और यहाँ कहा जाता है कि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन की सच्ची संपत्ति कहलाते हैं। एक ऐसा दिन बनाइए जहां आप कम से कम कुछ थोड़ा से हंसते रहे। क्योंकि हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा यही जीवन का सच्ची संपत्ति कहलाए है।

0: कहाँ जा रहे हो?
1: खाटू श्याम जी जा रहे
0: हैं। चलो रास्ते में छोड़ देता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ।
2: आ जाओ भाई आ जाओ, मैं छोड़ दूंगा रास्ते में, मैं भी जा रहा हूँ। आ जाओ।

0: भाई जी देखो दर्शन भी हो गए बाबा जी के, अब चलो घर छोड़ देता हूँ तुम्हें।
1: बाबा जी अब तो मेरा घर भी यही है, सब कुछ यही है।
0: चलो अब क्या बोल सकता हूँ तुम्हें, जैसे श्याम जी की मर्जी। ठीक है फिर मैं चलता हूँ।
2: हंसराज रघुवंशी जी की आवाज में खाटू श्याम के सुंदर सा भजन।

सुनने वालों सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं। शुभ प्रभात कहा जाता है। और ये कहना चाहूंगा कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। आज आपका एक दिन शुभ होए। एन हेल गुइदाग तुगेवेंस्ट। और इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि लेखक जो लिखते हैं बड़ा सोच समझ के संदेश रखते हैं कि जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं।

मैंने मेहंदी सजाए रहे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाए रहे कृष्ण नाम की, मेरी चुनरियों में कृष्ण, मैंने नथनी सजाई रहे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैं ज्योति जलाई रहे कृष्ण नाम की, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरा तन मन रंग है उसी के रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मैंने माला बनाई रहे कृष्ण नाम की।

पना बना ले हो मेरे शाम, ये सुंदर सा भजन जो खाटू श्याम जी के अंतर्गत हम सब रखे। हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे। कहा जाता है जब अकेले हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो।

लेखक ने अच्छा ही लिखा है कि जब अकेला हो तो परमात्मा से बात किया करो, और जब किसी के साथ हो तो परमात्मा की बात किया करो।

कहते हैं कि बीते हुए कल कभी वापस नहीं आता है, पर बीते हुए कल में लोगों का वर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है।

कैसा हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मिले हुए हर व्यक्ति बहुत ही अच्छा है। मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ।

सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और मैं आपके साथ जुड़ा हूं। कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे कुछ समय तक।

स्वार्थ और बिना मुलाकात के प्रतिदिन याद करने वाला भी सौभाग्य से मिलते हैं। क्या आज किसी को आप याद और करेंगे या करने वाले हैं? और जैसे कि हर बार की तरह हम अपने दोस्तों का याद में भी रहते हैं या हम अपने परिवार को याद करते हैं।

अमित कुमार और लता मंगेशकर के आवाज में हम सब ये सुंदर सा गीत को सुने। फिल्म जो लव स्टोरी से निकाला गया 1981 और जिसमें काम किए कुमार गौरव और विजयता पंडित जी ने। कहने के तात्पर्य ये है कि कोई के याद आ रहे हैं, किसी का याद आ रहे हैं, तो हमारे पास तो अब व्हाट्सएप भी है, हमारे पास अब टेलीफोन भी है और बाकी के आप खुद समझदार है। हम अगला फिल्म का गीत जो आपके लिए रखने वाले हैं

का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। सुनने वालों, एक फिल्म है जो आज कुछ 30 साल से लगातार भारत बॉम्बई मराठा मंदिर में जो 11 AM पे चलाया जाता है, अभी तक रोज हफ्ता में 7 दिन द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो दोस्तों, ये फिल्म को देखने के लिए दुनिया के हर एक प्रांतों से जा करके और बॉम्बे शहर में और देखते हैं लोग। और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको अगर ये फिल्म देखने का इच्छा है तो ज़रूर बॉम्बे जाइए और वहाँ पर ये फिल्म का कुछ 30 साल से चल रहा है, वहाँ का मज़ा कुछ और है। हम याद करते हैं अपने दोस्तों के और अपने संबंधियों के, कोई किसी को भी याद करते हैं। उस अंतर्गत में कुछ सुंदर सुंदर सा गीत और हम रखने वाले हैं आपके साथ।

और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं। दिल और फूल दोनों ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ लोग दिल और फूल से भी खूबसूरत होते हैं, और वो कौन है? वो कौन है? कहे जाते हैं कि वो है आप।

सुनो लो, आज के गीतों से जरूर किसी किसी को याद और आते होंगे। और आज जो सुंदर सुंदर गीतों से हम आपके साथ जुड़े हैं, अच्छे दिन के चक्कर में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है कि जो गुजर गया वही अच्छे दिन थे। दोस्तों, इस बात पे ध्यान देते हुए हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनवालो, ये सुंदर सा गीत को हम सब सुने। और यहाँ जो कहा जाता है कि खुद को एक सोने के सिक्के के जैसा बनाइए, जो कि अगर नली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। हम एक और भी सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के ओर से।

मोहब्बती फिल्म से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत, जिसमें काम किए हैं शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जी।

यहाँ तक था मेरा हिस्सा का कार्यक्रम। आशा ये रखता हूँ कि कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जो जुड़े रहे आपके साथ, आपके जरूर अच्छा लगे होंगे। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और ये जरूर कहना चाहूँगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

हर काम के लिए, हर अफर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे।

करते वाले साईं बाबा। सुनने वालों, आपके लिए पेश किया गया है फिल्म का नाम, जी हाँ, अमर अकबर एंथनी। फिल्म का नाम है नेखंतिन सेफन सेफन तखे, पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है। सोच रही हूँ उसी फिल्म से एक और सुंदर गीत आपके लिए चला दूँ।

सैफ अली प्यार के दुश्मन, हाय हाय, वही मशहूर फिल्म, जी हाँ, जहाँ से हम उन दिनों में बहुत मशहूर हुआ करते थे। ये फिल्म के नाम जिक्र तो चारों ओर हुआ करते थे, और वही फिल्म है जिसका नाम है अमर अकबर एंथनी, जी हाँ।

कहते हैं कि रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। फिल्म ताजमहल से लता और मोहम्मद रफी जी।

बिल्कुल बिल्कुल आप ही के लिए यहाँ से चलाया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से, जहाँ जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है, जहाँ कोशिशों का कद बड़ा होता है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ता है।

बस प्यार ही करते रहना और क्या करे, प्यार करते रहना और निभाते रहना। जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, जब से लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं, एक दूसरे को समय देने में उतना ही

एक बात ये भी जरूर से याद रखना, हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखना कि जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ आपको बेहतर और मजबूत बनाने के लिए आता है। ये मेरे लिए भी लागू है, जी हाँ मेरे लिए भी लागू है कि जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ हम सबको बेहतर और मजबूत बनाने के

दिल में बन कर दूं और दरिया में फेंक दूं चाबी। आपको कितने लोग पहचानते हैं, आपको कितने लोग पहचानते हैं, ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से आपको पहचानते हैं ये मायने रखते हैं।

द टाइटल सॉन्ग उसी फिल्म के, और हम आपसे क्या कहे, आपको हम लेकर चलते हैं फिल्म लवारिस की ओर। पर गीत चलाने से पहले ये जरूर कहूंगी कि एक सवाल है, आदमी कहता है पति को गुस्सा आता है तो वो पत्नी पर हाथ उठाता है, आदमी को गुस्सा आता है तो वो पत्नी पर हाथ उठाता है, लेकिन हाथ पत्नी पर क्यों, क्यों सिर्फ पत्नी पर हाथ उठाता है, अपने माता अपने पिता भाई बहन पर क्यों नहीं? ये एक सवाल है, जरा आप भी पूछो अपने आप से। फिल्म लवारिस से हम ये सुंदर गीत आपके लिए चला देती हूँ।

गोद में बिठा लो, बच्चे का क्या काम है। फिल्म लवारिस में से ये सुंदर सा गीत हमने सुने, आप ही के लिए पेश किया गया है सुनने वालों। मदद एक ऐसा घटना है, मदद एक ऐसा घटना है, करे तो लोग भूल जाए, करे तो लोग भूल जाता है, और ना करे तो लोग याद रखते हैं।

हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहोन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूँ और ये कहना चाहूंगा कि हम सब फिर उपस्थित हो गए स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर एक मजेदार कार्यक्रम में विषय रखा गया है। आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बबली जी अपना एंट्री लेते हैं, फिर उसके बाद में राजेंद्र जी जो 8000 किलोमीटर दूर से और सही पर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। तो पहले बबली जी।
1: बड़ों की दी हुई आशीष और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाती हैं तो जीवन रंगों से भर जाता है। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार।
0: बबली जी के ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। तो राजेंद्र जी, आप 8000 किलोमीटर सही, पर आपके ओर से क्या संदेश है? आप अपना एंट्री लीजिए।
2: 8000 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन हमारा जो दिल है वो तो नीदरलैंड्स में ही है, इसीलिए तो हम इस कार्यक्रम को इतनी दूर से भी करने का बड़ा अच्छा लगता है और लोग हमारे इस कार्यक्रम को सुनते हैं तो उनको भी बहुत ही मन भावुक होता है। लेकिन आज के जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत ही विशेष कार्यक्रम, यज्ञ विशेष कार्यक्रम का जो शीर्षक है वो है यज्ञ विशेष। यज्ञ क्यों किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसा करना चाहिए, इस प्रकार की सारी हम जानकारी देंगे। लेकिन जो लोग उदास बैठे हैं, क्यों ना उनके लिए एक भजन संजय जी सुना दिया जाए।
0: राजेंद्र जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि जो अभी उदास, अभी शायद मामा भी थोड़ा से उदास बैठे होंगे ना?
2: हाँ, तो उदासी दूर हो जाएगी मामा की भी, तो सुना दिया जाए।
0: चला देते राजेंद्र जी।

0: जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े। ये सुंदर सा गीत जो हम सब रखे आपके लिए सुनने वालों, और खास करके आज का जो विषय हमारा है, जो कितने प्रकार के यज्ञ होता है उसके बारे में हमारे मास्टर जी जो भारत देश से ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, तो मास्टर जी आप ही बताइए कि कितने प्रकार के और यज्ञ और आज का जो विषय है उसके बारे में कुछ संदेश।
1: हाँ, आज का जो विषय है वो यज्ञ के ऊपर ही पूरा निर्भर है, यज्ञ विशेष। तो यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, स्रोत और समार्थ। स्रोत का अर्थ है श्रुति प्रतिपादित यज्ञों को स्रोत यज्ञ, और स्मृति प्रतिपादित यज्ञों को समार्थ यज्ञ कहते हैं। जो लोग पंडित हैं वो बड़ी अच्छी प्रकार से इस चीज को समझ रहे होंगे, और जो पंडित नहीं है वो इसको पूछ सकते हैं, जो नहीं समझ रहे होंगे तार कर सकते हैं रेडियो में, और रेडियो के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि स्रोत और समार्थ का क्या मतलब होता है। तो स्रोत यज्ञ में केवल श्रुति यानी सुनना, प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग होता है। जैसे मंत्र बोला वो सुना, वो यज्ञ स्रोत हो गया। और स्मार्ट यज्ञ में वैदिक पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। वैदिक यानी जो वैद वेद है उनके अनुसार, पौराणिक यानी सबसे पुराने, और तांत्रिक यानी जो तंत्र क्रिया होती है उन मंत्रों का प्रयोग होता है स्मार्ट यज्ञ में। तो वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें पांच यज्ञ ही प्रधान माने गए। जो वेद है हमारे, चार वेद हैं, उनमें बहुत प्रकार के यज्ञों का प्रमाण मिलता है। कैसे कैसा है जब वेद पढ़ेंगे तो सब लोग समझेंगे इस चीज को। लेकिन जो चार यज्ञ हैं उनमें प्रमुख है, प्रधान है, यानी सबसे आगे है। कैसे? अग्निहोत्रम, यानी जो हम अग्नि जलाते हैं उसमें यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं अग्निहोत्रम। फिर दर्श पूर्णमासो, पूर्णमासी के दिन, चतुर्मास्यानि चार महीने में एक बार, और पशुयांग और सोम यज्ञ। ये यज्ञ विशेष है। ये पांच प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, इसमें एक यज्ञ जो जुड़ा सोम यज्ञ, इसलिए पांच हो गए हैं। यह श्रुति प्रतिपादित है। श्रुति मतलब जो सुनने से आगे परंपरा बढ़ी है, श्रुति उसके प्रतिपादित है। वेदों में स्रोत यज्ञों की अत्यंत महिमा वर्णित है। हम लोग जब वेद की किताबें पढ़ते हैं, वेद सुनते हैं, सुनाते हैं, उसमें ये वर्णन मिलता है स्रोत यज्ञों को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। यानी सबसे बड़ा कर्म क्या है? स्रोत यज्ञ, वो श्रेष्ठ है। कुल स्रोत यज्ञों को 11 प्रकार से विभक्त कर उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। यानी 11 प्रकार से यज्ञों का संक्षिप्त यानी कम रूप में परिचय दे रहे यज्ञों का, कि कैसे कैसे यज्ञ होते हैं। स्मार्त यज्ञ सबसे पहला है कि विवाह के अंतर्गत विधि पूर्वक अग्नि का स्थापन करके जिस अग्नि में प्रातः साय नित्य हनादिकृत्य यज्ञ किए जाते हैं उसे स्मार्त अग्नि कहते हैं। गृहस्थ को स्मार्त अग्नि में पका भोजन प्रतिपादित करना चाहिए। जो लोग गृहस्थ हैं, शादीशुदा हैं, उनको
0: गृहस्थ माने, तो राजेंद्र जी गृहस्थ माने जो शादीशुदा, जो घर गृहस्थी में रहते हैं।
1: हाँ हाँ, स्मार्त अग्नि में पका भोजन प्रतिपादन, उनको पका भोजन प्रतिपादन करना चाहिए। और दूसरा नंबर का आता है इसमें स्रोता ध्यान यज्ञ, दक्षिणाग्नि विधि पूर्वक स्थापना को स्रोता ध्यान कहते हैं। पितृ संबंधी कार्य होते हैं, जैसे आप लोग कराते हो ना पितृ पूजा,
0: हाँ जी,
1: उसको कहते हैं स्रोताधान यज्ञ। और फिर तीसरा जो यज्ञ है वो दर्श भूषणार मास यज्ञ, दर्श भूर्ण मास यज्ञ, यानी अमावस्या और पूर्णिमा को होने वाले यज्ञ को दर्श और पौर्ण मास कहते हैं। इस यज्ञ का अधिकार सप्तनीक होता है। इस यज्ञ का अनुष्ठान आजीवन करना चाहिए, यानी आजीवन मतलब जब तक न मरे तब तक करना चाहिए। जैसे हमारे मामा जी करते हैं, वो आजीवन यज्ञ करते हैं। यदि कोई जीवन भर करने में असमर्थ हो तो 30 वर्ष तक तो करना ही चाहिए। अगर कोई पूरा जिंदगी भर न कर सके तो 30 वर्ष तक ये यज्ञ करना चाहिए। कौन से? अमावस्या और पूर्णिमा के यज्ञ। तो आप अमावस्या और पूर्णिमा तो सब लोग समझते ही हैं।
0: जी अमावस्या और पूर्णिमा, राजेंद्र जी इसमें थोड़ा से और जो हम लोग अपना सरनामी में टूटा भाषा में और समझा दिया जाए कि अमावस्या और कृष्ण पक्ष थोड़ा से और इसमें संदेश रख दिया जाता तो और बढ़िया होता।
1: हाँ तो पूर्णिमा जब होती है जब चंद चांद पूरा हो जाता है 15 दिन में पूरा हो जाता है, 15 दिन में कम कम होते होते एकदम हो जाता है,
0: अंधेरा हो जाता है
1: तो उसी को अमावस्या और जब पूर्ण हो जाता है पूर्णिमा कहते हैं।
0: ऐसा तो राजेंद्र जी ये संदेश बड़ा धमाकेदार संदेश है यज्ञ के अंतर्गत, ना क्यों ना हम थोड़ा से एक गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: ये सुंदर सा गीत श्री देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा अति सुंदर रूप से और जो बनाया गया ये नया एक्टर्स जिसमें ऋतिक रोशन ने अपना काम अपना कला से प्रदर्शन दिया। राजेंद्र जी, आज का विषय का बोल है यज्ञ और कितने प्रकार के यज्ञ करना चाहिए, कर सकते हैं लोग और किया जाता है, उस अंतर्गत में संदेश आप रख रहे हैं।
1: जैसे कि यज्ञों की बात चल रही थी, सबसे पहले हमने बात करी है कि यज्ञ विशेष यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, स्रोत और समार्थ। फिर स्रोत समार्थ में पांच प्रकार के हुए, फिर पांच प्रकार के अलग अलग अलग प्रकार के, तो हम चौथाई पे पहुंचे थे चतुर्मास्य यज्ञ पे। चार चार महीने पर किए जाने वाले यज्ञ को चतुर्मास्य यज्ञ कहते हैं। इन चारों महीने को मिलाकर चतुर्मास यज्ञ होता है। चतुर्मास मतलब चार चार महीने पे जो यज्ञ किया जाता,
0: हर एक चार महीना पे किया जाता था।
1: हाँ, वो चतुर्मास। फिर होता है पशु यज्ञ। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में या दक्षिणायन या उत्तरायण में संक्रांति के दिन एक बार जो पशु याग किया जाता है उसे निरुढ़ पशु याग कहते हैं। जब उसके महीने में आप देखते होंगे कि पूर्व माघ के महीने में जब सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ता है और इधर से उत्तरायण के माघ के महीने में आप देखते होंगे सूर्य जो है छह महीने दक्षिणायन की तरफ जाता है, छह महीने उत्तरायण की तरफ जाता है।
0: जी जी, छह दक्षिणायन और छह महीने उत्तरायण हो जाता है।
1: हाँ, तो उस समय एक यज्ञ किया जाता है, उसको पशु यज्ञ बोलते हैं। और फिर आ गया आग्रजानिष्टि नवान यज्ञ, यानी प्रतिवर्ष बसंत और शरद ऋतियों नवीन अन्न से यज्ञ, गेहूं चावल से जो यज्ञ किया जाता है उसे नवान यज्ञ कहते हैं।
0: तो ये राजेंद्र जी, ये नवीन यज्ञ जैसे आप कह रहे हैं, तो ये बात हो जाता कि नया फसल जो कटे हैं उसे लेकर ये यज्ञ किया जाता है।
1: हाँ, जब फसल पक्के तैयार हो जाता है खेत में,
0: हाँ जी,
1: तो उस तैयारी जो फसल तैयार हो जाता है उसकी तैयारी और कटने से पहले एक यज्ञ किया जाता है, क्योंकि भगवान को अर्पित किया जाता है। और वो नवान यानी नवा अन्न जो आता है ना, उसको बोलते नवान यज्ञ।
0: नवान यज्ञ,
1: हाँ, आग्रजानष्टि बोलते हैं संस्कृत में और हिंदी में उसको नवान यज्ञ बोलते हैं। सातवां नंबर का जो यज्ञ है वो सौतामणि यज्ञ यानी पशु यज्ञ। सौतामणि इंद्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है, सौतामणि यज्ञ इंद्र संबंधी पशु यज्ञ है। यह यज्ञ दो प्रकार का है, एक वह पांच दिन में पूरा होता है। सौतामणि यज्ञ में दो गौ दुग्ध के साथ सुरा मध्य का भी प्रयोग होता है। सुरा यानी मध्य, मतलब
0: नहीं पता मुझे,
1: जो दारू बोलते हैं।
0: अच्छा,
1: ड्रिंक,
0: हाँ,
1: हार्ड ड्रिंक उसको सुरा बोलते हैं, मध्य।
0: ऐसा
1: मदपान कहते हैं ना, मदपान,
0: हाँ जी,
1: उसको बोलते सुरा। हाँ, उसका भी प्रयोग होता है सौतामणि यज्ञ में, इसलिए हमारे मामा जी जो है उसका प्रयोग करते हैं यज्ञ में। किंतु कलयुग में वज्र है दूसरा पशु याग कहा जाता है, क्योंकि इसमें पांच अथवा तीन पशुओं की बलि दी जाती है। पशुओं की भी बलि दी जाती है यज्ञ में, ये तो पांच की या तो तीन की। एक यज्ञ जो सौतामणि यज्ञ है वो पशु यज्ञ है, उसको ये तो सुरा से किया है। सुरा दो प्रकार के, सुरा से और एक पशु बलि से, जो कि अभी थोड़ा सा मैंने देखता हूँ कि कम हो गया है, लेकिन अभी भी है कहीं ना कहीं।
0: कहीं कहीं गांव आदि में होता होगा ना?
1: नहीं, बहुत जगह अभी ये पशु बलि बंद हो गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी चल रहा है।
0: अच्छा,
1: नंबर आठ है सोम यज्ञ। सोमलता द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसे सोम यज्ञ कहते हैं, या बसंत में होता है। बसंत यानी जब फूल खिलते हैं चारों तरफ एकदम,
0: जिसे हम लेंत कहते हैं ना।
1: हाँ, वह यह यज्ञ एक दिन ही पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ में 1600 ऋत्विक ब्राह्मण होते हैं। ये यज्ञ केवल एक दिन का होता है और इसमें 16 ब्राह्मण बैठते हैं यज्ञ करने के लिए। नवा जो यज्ञ है वो वाजपेयी यज्ञ हो गया। इस यज्ञ के आदि और अंत में बृहस्पति नामक सोम याग अथवा अग्निस्तोम यज्ञ होता है। यह यज्ञ शरद ऋतु में होता है। शरद ऋतु मतलब जो ठंडी होती, ठंडी पड़ती है, जैसे भारत में भी ठंड आने वाली, ज्यादा ठंडा अभी कम है, तो उस समय ये यज्ञ होता है।
0: ऐसा
1: ये अभी जो शरद चल, अभी शरद ऋतु चल रही है, शिशिर आने वाली, क्योंकि भारत में तो 6 ऋतुएं है ना, तो शरद ऋतु अभी चल रही है, शिशिर मतलब जब ज्यादा ठंडी होगी उसको शिशिर बोलते हैं, तो इस समय यज्ञ होता है।
0: वो तो शरद इस समय भारत में चल रहा है और शिशिर आने वाला है।
1: हाँ शरद चल रहा है।
0: तो जैसे कि ये बात कहा जाता है कि 24 दिन बाकी है 222 के पूर्ण होने में और 223 प्रारंभ होने वाला है, तो ये इसी साल हो जाएगा शिशिर।
1: हाँ 15 तारीख से अभी जब ज्यादा ठंडी हो जाती है तो उसको शिशिर बोलते हैं। हाँ दिसंबर जनवरी ज्यादा रहता है, दिसंबर जनवरी, लेकिन जो मेन शिशिर होता है 15 दिसंबर के बाद।
0: ऐसा तो राजेंद्र जी क्यों ना हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: जरूर जरूर जरूर,
0: क्योंकि ये संदेश जो आपने रख रहे हैं जो यज्ञ के अंतर्गत, तो ये काफी जानकारी है जो हम सबके में कितने बात नहीं पता था और इस बात को ज्ञान हो रहा है, तो हम पहले एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे।

अरे इतना ज्यादा शोर, पार्वती आई उस ओर। डरकर माता उमा के आगे दुम दबाकर मूषक भागे, पर अपनी धुन में मस्त गजानन थिरक रहे हैं भूल के तन मन।

0: ये सुंदर सा गीत निकाला गया और फिल्म का नाम जो बाल गणेश से निकाला गया, ये सुंदर सा गीत हम सब आपके लिए प्रस्तुत रखे। और राजेंद्र जी जो इस समय दूर सही पर हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो राजेंद्र जी आगे का कार्यक्रम आप ही सुनाइए।
1: आगे का जो कार्यक्रम है, हम बात कर रहे थे यज्ञ की, नौ प्रकार के यज्ञ की बात हो चुकी है, दसवां है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा कि जब भगवान राम एकदम रावण से विजय प्राप्त करके लंका लौटे और लंका से लौट के हमारे भारत में आए, रावण से विजय प्राप्त करके, और जब वहां पे आए अपने जगह पे, तो उन्होंने भी एक राजसूय यज्ञ करा और घोड़ा छोड़ दिया। जब राजसूय यज्ञ का मतलब होता है कि एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है और चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाता है, तो उसके करने के बाद क्षत्रिय राजा जो है समाज चक्रवर्ती उपाधि को धारण करता है, मतलब वो सबसे जीत जाता है, और जो अगर कोई राजा नहीं मानता है तो उसको जीतना होता है। जब वो सबसे जीत जाता है तो उसी को चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं,
0: चक्रवर्ती सम्राट।
1: तो भगवान राम ने भी करवाया, और इसके बाद जो युधिष्ठर ने भी राजसूय यज्ञ कराया था, जब वो जीत गए थे युद्ध तो वो सब चक्रवर्ती हो गए थे।
0: अच्छा,
1: तो इसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं। और राजसूय यज्ञ के कराने के बाद ये ऐसा एक यज्ञ होता है। इसके बाद जो यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। और भगवान राम ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था, पांडवों ने राजसूय यज्ञ कराया था।
0: ऐसा,
1: तो जब हाँ दिग्विजय के लिए जब घोड़ा छोड़ा जाता है तो यह यज्ञ 2 वर्षों से भी अधिक समय में समाप्त होता है, क्योंकि पूरा देश में घोड़ा छोड़ेगा तो घोड़ा 2-4 दिन में तो कहीं जाएगा नहीं, वो घोड़ा अलग अलग जगह जाएगा। तो जब दो वर्ष से भी अधिक समय, इसलिए कहा कि पूरा देश में जाएगा ना, और उस घोड़े को जो पकड़ लेगा उसको यज्ञ, उसको युद्ध करना होगा, फिर उसको जीतना होगा, तब इस यज्ञ की समाप्ति होती है। इस यज्ञ का अधिकार सार्वभौम चक्रवर्ती राजा को ही होता है। जब राजा चक्रवर्ती हो जाता है तो इसके बाद ही वो अश्वमेध यज्ञ कर सकता है, यानी पहले राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। जैसे पहले ग्रेजुएशन करेगा विद्यार्थी, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, तो वैसे इसमें पहले राजसूय यज्ञ और इसके बाद अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद यज्ञ आता है पुरुष मेघ यज्ञ। इस यज्ञ समाप्ति 40 दिनों में होती है। ऐसा यज्ञ जो 40 दिन में समाप्त पूर्ण हो सकता है। इस यज्ञ को करने के बाद यज्ञकर्ता ग्रह त्याग पूर्वक वाम प्रस्थान में प्रवेश कर सकता है, यानी जो यज्ञ करता है उसको त्याग पूर्वक वान प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है, यानी 50 साल से 75 साल की जो आयु है 50 साल में यज्ञ करके फिर वो वानप्रस्थ की ओर चले जाता है। तो वो यज्ञ तो बहुत लोग कर सकते हैं, संजय जी आप भी कर सकते हैं उस यज्ञ को। हम
0: राजेंद्र जी ये तो मैं सुन रहा हूँ पहला बार ऐसा बात, क्योंकि समय होता ना एक बालकपन, एक गृहस्थ, एक 50 साल के बाद क्या कहते हैं उसे,
1: वानप्रस्थ,
0: और एक हो जाता है 75 के बाद सन्यासी ना,
1: सन्यासी। तो इसलिए तो आपका जो समय है, इस समय आपका जो वानप्रस्थ का समय चल रहा है, तो आप इस यज्ञ को करके वानप्रस्थ ले सकते हैं।
0: ऐसा,
1: हाँ। और मामा का जो है समय चल रहा है सन्यास का, तो उनको सन्यास का यज्ञ करना चाहिए।
0: तो मामा को करना चाहिए वो, क्योंकि वो 75 से ऊपर है।
1: हाँ, इसलिए
0: तो
1: 13वें प्रकार का जो यज्ञ है वो सर्वमेघ यज्ञ है। इस यज्ञ में सभी प्रकार के अन्न, मतलब जो खाद्य पदार्थ हमारे खाने वाले अन्न, उसको
0: खाने पीने का पदार्थ,
1: हाँ, और वनस्पतियों का हवन होता है। वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जो वनस्पति है पौधे, उनका हवन होता है। अन्न मतलब जैसे चावल, जौ, तिल, और वनस्पति मतलब जो पत्तियां हैं और वो है, वो सब चीज उसमें पड़ती है।
0: क्योंकि राजेंद्र जी कहने के बात यह है कि हमारे जो प्रोडक्ट होता है ना, जो हमारे यज्ञ में आदि प्रयोग होता है, तो सब नेचर नेचर से निकाला जाता है।
1: हाँ,
0: सब नेचर प्रोडक्ट होते हैं।
1: हाँ, तो इस यज्ञ में क्या होता है, सभी प्रकार के यज्ञ हो जाते हैं, कि जो यज्ञ ये यज्ञ करता है जो व्यक्ति, वो कैसे यज्ञ करना चाहिए उसको वनस्पतियों का, उसको जौ तिल चावल हवन सामग्री उसमें मिलाई जाती सारी चीज, मखाना है, ड्राई नट्स है, बहुत प्रकार की चीजें मिलाती है। और ऐसे यज्ञ में 34 दिन का समय लगता है इस यज्ञ को करने में। ये सर्वमेक यज्ञ सब लोगों के लिए होता है, सर्वमेक यज्ञ। अगला जो यज्ञ है वो एकाह यज्ञ है। एकाह मतलब होता है
0: राजेंद्र जी,
1: जी
0: जैसे कि आपने कहा एक 40 दिन के, ये वाला 34 दिन के, पर ऐसा अभी तक होता है भारत में भी होता है? मुझे तो नहीं लगता कि हॉलैंड में ऐसे किया जाता होगा।
1: हॉलैंड में हम लोग कराएंगे अब आके, जब मैं आऊंगा उधर करेंगे ऐसा, लेकिन भारत में होता है
0: ऐसा, होता अभी?
1: हाँ ऐसा होता है।
0: ओके ओके,
1: अलग अलग स्थानों में होता है और पूर्ण रूप से आज विधि विधान से जो पंडित लोग कार्य करते हैं, जो गुरुकुल में पढ़े हैं और जिनको शुरू से ये विद्या सिखाई गई, तो वो करते भी हैं और कराते भी हैं। अब हम बात कर रहे थे एकाह यज्ञ की। एकाह यज्ञ का मतलब होता है कि एक दिन में होने वाले यज्ञ को एकाह यज्ञ कहते हैं।
0: एकाह यज्ञ,
1: एकाह। इस यज्ञ में एक यज्ञवान और 16 विद्वान होते हैं, यानी एक तो होता है इनका मुखिया और 16 होते हैं यज्ञ करने वाले विद्वान। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और फिर इसके बाद आगे की यज्ञों की बात करें।
0: राजेंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मानो तो
1: गंगा, न मानो तो बहता पानी,
0: बस यही यही बात है, यही बात है। और हम चला देते वही गीत राजेंद्र जी।
1: जरूर जरूर जरूर।

0: पानी जो मानेंगे तो जरूर आपको गंगा दिखाई देंगे, गंगा का पवित्र पावन जल से स्पर्श होंगे, और ना मानेंगे तो बस यही होगा कि आप यहाँ से जा करके और गंगा स्नान करने को गए पर बस जल से स्नान करके आ गए, तो मानना के बात हो जाते हैं। राजेंद्र जी, यज्ञ, जितने प्रकार के यज्ञ आज मैंने सुना है ये तो मैं कभी नहीं सुना था, तो क्या संदेश और रखने वाले हैं
1: आपको इस प्रकार के यज्ञ लोगों के करवाने हैं वहाँ पे, क्योंकि आप यज्ञ पंडित हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ कराते हैं, तो ये यज्ञ भी होने चाहिए। बात करते हैं रुद्र यज्ञ की। यह तीन प्रकार का होता है, रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र यज्ञ। 5, 7, 9 दिन में होता है। महारुद्र 9-11 दिन में होता है और अतिरुद्र जो है 9 से 11 दिन में होता है। रुद्र यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं, यानी 16 या 21 पंडित होने चाहिए। और महारुद्र में 31 अथवा 41 विद्वान होते हैं, जो महारुद्र है उसमें 31 से 41 पंडित होने चाहिए। और अतिरुद्र यज्ञ में 61 से 71 यानी 61 से 71 विद्वान होते हैं।
0: ऐसा
1: रुद्र, हाँ, रुद्र यज्ञ में हवन सामग्री 11 मण, महारुद्र में 21 मण और अतिरुद्र में 70 मण हवन सामग्री होती है। तो मान, हमने सुना है कि जो हवन सामग्री अभी बन रही है उसमें पूर्ण रूप से हवन सामग्री नहीं, वो तो पता नहीं क्या क्या लोग मिक्स करके और हवन सामग्री के नाम से बेच रहे हैं, लेकिन अभी भारत में जो वर्ल्ड योग इंस्टीट्यूट है उसने बहुत बढ़िया रूप से हवन सामग्री को बनाया है, मैंने देखा है। तो वो वाले हवन सामग्री से अगर ये महारुद्र यज्ञ हो 70 मण, यानी एक मण में कितना किलो होता है, 40 किलो,
0: 40 किलो,
1: तो 70 मण में होना चाहिए। एक मण में जब 40 किलो होता है तो 70 मण में कितना किलो होगा, ये देखो 2800 किलो होगा।
0: तो 2800 किलो का उसे हवन करना चाहिए।
1: हाँ, तो जो महा अति अति रुद्र यज्ञ जो करेगा वो 2800 किलो हवन का होगा, और वो कम से कम 20,000 यूरो का पड़ेगा।
0: ऐसा,
1: हाँ, लेकिन इसके बाद वो डायरेक्ट जो है भगवान शंकर से बात कर सकता है।
0: राजेंद्र जी, ऐसा देखो, ये मैं आपसे सुन रहे हैं, मैं सुना हूँ कि भारत में भी ऐसे लोग भंडारा भी करते हैं, जैसे कि 100 किलो का आलू और 100 किलो का आटा, इस प्रकार से।
1: हाँ हाँ,
0: तो ऐसा भी जैसे कि हवन के आपने एक मेज बार है एक के साथ जोड़ दिया गया, तो ऐसे भी भारत में रखा जाता है।
1: हाँ, रखा जाता है इस प्रकार का। अब बात करते हैं विष्णु यज्ञ की। यह यज्ञ 3 प्रकार का होता है, विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, अति विष्णु यज्ञ। विष्णु यज्ञ में 5, 7, 8 अथवा 9 दिन में होता है, और विष्णु यज्ञ 9 दिन में, अति विष्णु 9 दिन में अथवा 11 दिन में होता है, और विष्णु यज्ञ में 16 अथवा 41 विद्वान होते हैं, अति विष्णु यज्ञ में 61 अथवा 71 विद्वान होते हैं, और विष्णु यज्ञ में हवन सामग्री 11 मण, महाविष्णु में 21 मण और अति विष्णु में 55 मण लगती है। तो मान, हम इस यज्ञ को पहले भारत में कराएंगे, फिर इसको ऑनलाइन करके नीदरलैंड में भी कराएंगे।
0: ऐसा,
1: हाँ, क्योंकि ये यज्ञ अगर हो जाएगा तो पूरा भारत का वातावरण शुद्ध हो जाएगा, जिस देश में होगा वही देश का वातावरण एकदम शुद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं हरिहर यज्ञ की। हरिहर महायज्ञ में हरि विष्णु और हर शिव इन दोनों का यज्ञ होता है। हरिहर यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। हरिहर यज्ञ में हवन सामग्री 25 मण लगती है। यह महायज्ञ 9 दिन अथवा 11 दिन में होता है। और शिव शक्ति महायज्ञ, जो शिव शक्ति यज्ञ है उसके बारे में बात करते हैं। शिव शक्ति महायज्ञ में शिव और शक्ति यानी दुर्गा, शक्ति किसको बोलते हैं, दुर्गा को।
0: राजेंद्र जी, पर उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, तो हम न्यूज और कमर्शियल के बाद फिर दोस्तों अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।
2: अद्वकात कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, Fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 10:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
8: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: यहाँ तक जो हमारे न्यूज और कमर्शियल का कार्यक्रम चला, और यहाँ से फिर कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो इस समय लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है डेन हाग शहर से हॉलैंड देश और लगभग 188 देशों में ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मास्टर जी जो दिल्ली शहर से और जुड़े हुए हैं ये कार्यक्रम में, अपना सहयोग दे रहे हैं और अपना ज्ञान को हम सब के साथ बांट रहे हैं। तो राजेंद्र जी, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और क्या संदेश है? और
1: संदेश यही है कि जो हम लोग यज्ञ की बात कर रहे थे कि कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं और कितने हवन सामग्री इन यज्ञों में लगती है, कितने मण लगते हैं, यानी ये 40 किलो का एक मण होता है। तो मैंने देखा है कि 20,000 यूरो तक का हवन सामग्री एक एक यज्ञ में लगता है, लेकिन इस यज्ञ करने के बाद जो फल की प्राप्ति होगी वो तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो लोगों को देखना चाहिए कि अगर कोई यज्ञ कराना चाहता है तो वहां पे करा सकता है। बात करते हैं शिव शक्ति महायज्ञ की। शिव शक्ति यानी शिव भगवान शंकर को बोलते हैं, शक्ति दुर्गा जी को बोलते हैं, उनकी जो पत्नी है उनको शक्ति का रूप है। इन दोनों का यज्ञ होता है, शिव यज्ञ प्रातः काल और यानी शक्ति यज्ञ दुर्गा का, इन दोनों का यज्ञ होता है। शिव यज्ञ प्रातः काल में और मध्याह्न में होता है, सुबह या शाम दिन में होता है, मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद।

0: हाँ 600 किलो का ये हो जाता है। तो राम यज्ञ यहाँ किसके बाद आता, राम यज्ञ। राम यज्ञ विष्णु यज्ञ की तरह ही होता है, राम जी की आहुति होती है। राम यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान, हवन सामग्री 15 मण लगती है। यह यज्ञ 8 दिन में होता है,
1: 8 दिन में।
0: तो राम यज्ञ भी विष्णु यज्ञ की तरह ही होता है, उसमें 8 दिन लगते हैं। और विद्वान कितने होते हैं, पंडित कितने होते हैं, 16 से 21 पंडित होते हैं। इसके बाद आता है गणेश यज्ञ। गणेश यज्ञ में 1 लाख यानी 1 लाख आहुति होती है, 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। गणेश यज्ञ में हवन सामग्री 21 मण लगती है। यह यज्ञ 8 दिन में होता है, गणेश जो यज्ञ होता है वो 8 दिन में हो जाता है, लेकिन 1 लाख आहुति इसमें होनी चाहिए।
1: तो इतने ज्यादा आहुति आहुति माने तो राजेंद्र जी इसे थोड़ा से और हमारी सरनामी में ट्रांसलेट कीजिए कि आहुति के मतलब क्या है।
0: तनी सा सरनामी में इसको ट्रांसलेट कर सकेला, इसको बोले लग ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनो प्रचोदयात् स्वाहा। एक आहुति हुई।
1: तो आहुति के मतलब है जो जो जो उसमें हवन में हवन कुंड में छोड़ा जाता है,
0: जो हवन कुंड में छोड़ा जाता है, स्वाहा किया जाता है, उसको आहुति, वही आहुति होती है
1: ऐसा।
0: हाँ, इस प्रकार के जो आहुति बता रहे हैं कि 1 लाख आहुति होनी चाहिए, इतने दिन होने चाहिए, इतने विद्वान होने चाहिए, विद्वान अथवा पंडित
1: जी।
0: इसके बाद 21वां प्रकार का जो यज्ञ आता है वो ब्रह्म यज्ञ होता है, प्रजापति यज्ञ। प्रजापति यज्ञ में 1 लाख यानी 1 लाख आहुति इसमें होती है, जैसे गणेश जी के यज्ञ में होती है। इसमें 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। प्रजापति यज्ञ में 12 मण सामग्री लगती है और 8 दिन में होता है। देखो जो गणेश यज्ञ में सामग्री होती थी वो कितनी, 21 मण होती है, प्रजापति में हो गई है 12 मण, यानी कम सामग्री इसमें थोड़ा लगती है
1: ऐसा
0: ऐसा। और इसके बाद आता सूर्य यज्ञ। सूर्य यज्ञ में 1 करोड़ आहुति होती है, ये बड़का यज्ञ रहला मान।
1: अच्छा
0: हाँ, 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। सूर्य यज्ञ में 8 अथवा 21 दिन में किया जाता है। इस यज्ञ में 12 मण हवन सामग्री लगती है, सामग्री इसमें ज्यादा नहीं लगती है, लेकिन जो मंत्र होते हैं इसमें वो ज्यादा होते हैं, आहुतियां ज्यादा दी जाती है, लेकिन हवन सामग्री कम लगती है
1: ऐसा।
0: इसके बाद आता है दुर्गा यज्ञ। दुर्गा यज्ञ में दुर्गा सप्तशती से हवन होता है। दुर्गा यज्ञ में हवन करने वाले 4 विद्वान होते हैं अथवा 16, या तो 4 लोगों से भी करा सकते हैं और 16 ब्राह्मणों से भी करा सकते हैं, 21ों से भी करा सकते हैं, 21 विद्वानों से भी करा सकते हैं। यह यज्ञ 9 दिन का होता है। हवन सामग्री 10 मण अथवा 15 मण लगती है, 10 या तो 10 मण लगाओ या तो 15 मण लगाओ। अगर आपके पास पंडित कम है तो कम लगेगा, ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, 10-15 मण का करीब करीब लग जाएगा। इसके बाद आता है 24वां यज्ञ है, उसका जो विशेष महत्व है, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो है वो बड़ा विशेष, उसमें बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, लेकिन उसके पहले भी एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ को लक्ष्मी नारायण यज्ञ के पहले एक यज्ञ उसको बोलते हैं लक्ष्मी महानारायण यज्ञ के पहले जो यज्ञ है। दुर्गा यज्ञ की बात हो गई है, दुर्गा सप्तशती की लक्ष्मी यज्ञ, जो लक्ष्मी महानारायण यज्ञ है उससे पहले लक्ष्मी यज्ञ होता है, क्योंकि लक्ष्मी और महानारायण, महानारायण मतलब भगवान विष्णु और लक्ष्मी यानी उनकी पत्नी, और उससे पहले केवल लक्ष्मी का यज्ञ बहुत लोग करते हैं। लक्ष्मी यज्ञ में श्री सूक्त से हवन होता है, आप कराते भी होंगे लक्ष्मी यज्ञ से, श्री सूक्त से। और लक्ष्मी यज्ञ में 1 लाख आहुति होती है। इस यज्ञ में 11 अथवा 16 विद्वान होते हैं या 21 विद्वान, इसमें भी या तो 11 या तो 16 या तो 21 पंडित होने चाहिए। विद्वान 8 दिन में किया जाता है, और अब कितने दिन में किया जाता है विद्वानों द्वारा, 8 दिन। 15 मण हवन सामग्री लगती है, इसमें भी कम हवन सामग्री लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। लेकिन जो अब लास्ट यज्ञ है 25वां, वो है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लक्ष्मी और नारायण का ज्ञान होता है, प्रातः लक्ष्मी दोपहर नारायण का यज्ञ होता है, सुबह को लक्ष्मी का होता है और दोपहर में नारायण का यज्ञ होता है।

0: 108,000 अथवा 125,000 आहुतियां होती है। ये तो 108,000 आहुति करो या तो 125,000 आहुति देते हैं। इसमें 30 मण हवन सामग्री लगती है, 21 विद्वानों से होते हैं। यह यज्ञ 8 दिन 9 दिन अथवा 11 दिन में पूर्ण होता है। तो इस प्रकार जैसे लोगों ने आज यज्ञ के बारे में बात ही सुनी और इतने मण सामग्री लगती है, मैं देखा हूं कि नीदरलैंड में यज्ञ तो होते हैं लेकिन इतने बड़े यज्ञ मैंने नहीं देखे कभी। और इतने बड़े यज्ञ अगर करेंगे तो पहले वहां परमिशन लिया जाएगा, वहां धुआं नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये सब सुविधा तो भारत में ही हो सकती है। जिन लोगों को यज्ञ कराना है वो डायरेक्ट मामा जी के साथ भारत आ जाएंगे। यहाँ सब यज्ञ की सारी व्यवस्था पूर्ण है और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भगवान का कार्य जो है ये पूर्ण कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसमें कोई परमिशन किसी की लेने की जरूरत नहीं, यहाँ सर्व परमिशन सर्वसम्मोपन होता है। तो यज्ञ के बारे में अगर किसी को कुछ और पूछना है तो रेडियो के माध्यम से तार कर सकते हैं और यज्ञ की बात कर सकते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, ये इतना काफी जानकारी आप हम सबको यज्ञ के अंतर्गत जो आज का विषय रखा गया था उस अंतर्गत हाँ। में काफी संदेश सुना ही चुके हैं। क्यों ना हम एक हाँ। सुंदर से गीत के ओर बढ़ते हैं और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
0: जरूर

ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने रेडियो फाहुन हिंदुस्तानी द्वारा, और कार्यक्रम जो चल रहा है इस समय जो ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम जो चल रहा है। तो दोस्तों सुनने वालों, अगला संदेश जो बबली जी हम सबके सुनाने वाले हैं, और आज का संदेशों में संदेश

0: जैसे कि अभी संदेश आपने सुने राजेंद्र जी के जो ओर से, जो कितने तादाद में यज्ञ किया जाता है, किया जा सकता है और अभी भी किया जाता है। और इससे बबली जी, इसे क्या इस बात को सुन के आप कुछ संदेश रखने वाले हैं?
1: मेरा संदेश तो थोड़ा दूसरा है, राजेंद्र जी का तो वो यज्ञ के ऊपर था।
0: राजेंद्र जी का संदेश जो यज्ञ के ऊपर था और आपका संदेश कुछ दूसरा है, तो क्यों ना आप अपना संदेश हम सब के सभी सुनने वालों के लिए रख देते हैं।
1: हाँ जी जरूर। एक बार श्री कृष्ण जी ने एक गाय से पूछा, मैंने तुझे सींग दिए ताकि तू अपनी रक्षा कर सके, पर तू तो कभी किसी को मारती ही नहीं। गाय बोली, हे काना, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ की ही उपमा दी थी। यह मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं।
0: ये संदेश अभी आगे बढ़ाने वाले हैं आप।

0: ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है डनाक शहर से, और यहाँ हमारे कार्यक्रम में हमारे साथी शिव जी भी उपस्थित हो गए स्टूडियो में, और बबली जी जो कृष्ण भगवान और उनके गाय के अंतर्गत में कुछ संदेश रखने वाले थे। तो बबली जी आप जरूर अपना संदेश रखिए।
1: गाय बोली, हे काना, एक बार जब पूतना नाम की राक्षसी ने तुम्हें अपना विषैला दूध पिलाया था, तब भी तुमने उसे अपनी माँ ही कहा था। यह मनुष्य तो प्रतिदिन मेरा ही दूध पीते हैं। यह भले ही मुझे माँ ना माने, पर मैं तो इन सभी को अपना पुत्र मानती हूँ। भला मैं कैसे इन्हें मार सकती हूँ। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने उन्हीं आंसुओं की बूंदों को अंजलि में लेकर यह संकल्प किया, हे गौ मैया, तू महान है। मैं चाहे जिस लोक में रहूं, पर तेरी रक्षा के लिए मैं सदैव आता रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक तू ही है, मारने वाले को भी अपना पुत्र ही समझती है।

0: हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे यानी कि दनहाह के एक ऐसा व्यक्ति जो कितने कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, कितने कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। और अगर पूछा जाए कि शिवजी आपके पास कैसे इतना समय होते हैं, तो सर्वप्रथम आपके स्वागत किया जाता है।
1: हाँ जी हाँ, नमस्कार सब कोई के सुनने वाले के। अब मैं एक दूसरे कार्यक्रम से आया है जो उनके नाम है स्टार्च मार्कर्स।
0: हाँ तो स्टार्च मार्कर्स
1: जी,
0: जो कार्यक्रम का जिसमें आप भाग ले रहे थे और आप आए
1: जी।
0: पर शिवजी गत दिनों मैं रेडियो सुन रहा था, तो मैं सुन रहा था आपको दनहाह एफएम पर भी
1: जी,
0: और उसमें आप किस कारण भाग लिए?
1: उस कारण कि हमें रोड क्रश बेल किया और बोले कि आप इतना दिन से काम करे हैं, हम मंगला आपके ना रेडियो पर, तो उस सेंट्रल विवृत जो रहा वहाँ पर बोले आइयो, तो बोले क्लब करिए, तो हम तुकर खादी खोलब और उकर नाम हाक से बाकी वो छोटा ही होकर बेकर से इंडिया में है, वही रख में कॉफ़ी देते रहते ही, तो हम अपन प्रचार करें कि कौची हम रोध क्रश में करीला। और साँच के तो कन्हिया फ्राइवेल खर्च दाख रहा, तो हमें एक वो एक खौद स्पेल्थ मिला रोध क्रश की तरफ से कि हम उतना कार्यक्रम करीला। हम सबसे ज़्यादा करते थे बकरा लोग रहे 10 बरिस 20 बरिस में, हमारा कुछ कमती है ना दृढ़ तखियार,
0: यानी कि 33 साल से आप रोड क्रश
1: कुछ कमती कुछ कमती
0: 33 साल से आप
1: 1 अप्रैल से हो ही गया,
0: 1 अप्रैल से
1: जी,
0: जो 33 साल हो जाएगा।
1: हाँ
0: जो आप सहयोग दे रहे हैं, पर आप ना सिर्फ रोड क्रश के लिए काम करते हैं, आप भी काम करते हैं जो मिंदर जिसे जो फुटसल बैंक आदि उस सब में आप सहयोग देते हैं।
1: जी हाँ,
0: तो आप उसके बारे में भी कुछ कहिए।
1: हाँ हर हफ्ता हम लोग ऐसे पक करीला, तो अबे 1 महीना पाछे तो ऐसे 800 रहा, आज हम लोग पक किया और हर हफ्ता ऐसे आवे 35 या 50, तो आज हम लोग पास पक किया 200 तख्तक। और एक लोप बांत में आवे है, तो हमारा काम रहा आज कौची हम धरत रहीन हमू तो भूल गई हर हफ्ता दूसरा चीज रहे है। ओ हाँ, हम कोकस मेलक एक पाकी धरते थे और एक आदमी चल गया, तो हम वो ना रेड बीन्स बोतल में लाल जने ब्रांड बोना वो के हम धरते थे, तो लोपन बांध में जा तो बड़ा स्नेह स्नेह चाहिए काम करेगा। हाँ हम एक के हिंदुस्तानी है वहाँ पर।
0: तो शिव जी ये बात हो जाता है कि जैसे कि आप कहे कि 200 तख्त पकेत एक दिन, तो ये पूरा दनहाह के है या एक खदील तो दनहाह का?
1: नहीं नहीं, वो शनिवार के भी वो लोपंद मानता आवे है और बृहस्पतिवार के, तो ये सब जो हम लोग पक कर देते हैं तो वो जाते हैं सगरो सग जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ये हम लोग वातरंग में करते हैं,
0: वातरिंगों में पाक होते हैं, तो फिर वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूशन।
1: हाँ,
0: में
1: जाते हैं, तो बेसवान ले जा सकरो धरे केरकी में और ऐसे ऐसे।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, यहाँ जैसे कि आप सुन रहे हैं कि हमारे लिए शायद ये एक छोटा सा बात होगा, पर शिवजी जो अपना सहयोग देते हैं, अपना सहयोग देते रहते हैं और सभी प्रकार से जो फ्राइविलखर्स बान, और आज का मौसम तो कितना सुंदर मौसम है, बर्फ बाहर निकल रहा है, बाहर गिर रहा है, फिर भी इन्होंने अपना समय निकाल करके सेवा के लिए यहाँ स्टेशन में भी आप आकर के पहुँच गए, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता कि आप ऐसा व्यक्ति होए। वही मुतोर नहीं, आप एक फोरबील थे जो हमारे सभ्यता, हमारे सरनामी, हमारे हिंदुत्व के जो ऐसे यानी कि संदेश रखते हैं कि अपना योगदान सब चीज में देते रहते हैं। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: सुनने वालों, ये यहाँ पर यह कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो रखा जा रहा है, और ज्योति का प्रकाश में हर बार कोशिश किया जाता है कुछ रंग बिरंगी संदेश, जैसे कि आज राजेंद्र जी अपना संदेश रखे, बबली जी भी अपना संदेश दे रखे, और हमारे शिव जी जो अपना संदेश रखने वाले हैं अभी। तो शिव जी, आप कुछ ये संदेश जो आज रखने वाले हैं देनहाक के अंतर्गत, क्या संदेश है आपके ओर से?
1: देनहाक के अंदर यही है कि अभय ने हम एक जहाँ से आया, वो जहाँ पर स्टाच माकर सुकर नाम है, तो वो हम लोग से पूछे है कि देनहाक में जब फरांदर होई तो कौन ची अब लोग, तो हम लोग के इंस्परा कभी है, तो ओमन हम फ्राइवेलक भाग लेला, हम यही ना हिंदुस्तानी जो उनकी वहाँ हम जाइला, और ओमन बतावल जाए कि देनहाक में कैसे फरांदर कर सकीला हम लोगन।
0: यानी कि हमारे हिंदू भाइयों में से कोई भी इसमें सहयोग नहीं देते, आप ही सिर्फ
1: जी?
0: हाँ। और हमारे लिए जरूर कुछ ना कुछ आप अपनी ओर से रखते रहोगे, क्योंकि खातम अल-खमीन बलांग ना
1: जी जी जी,
0: अपना गांव, अपना गांव तो गांव तो कहा जाता है, जैसे हाँ। कि हम अभी हाल ही में इंडिया में होकर आए ना
1: जी,
0: तो गांव जा कर के अब में से ज्यादा अब गांव निकल जाता
1: है। बकिया तो शहर
0: है, शहर है, और अपना शहर के कैसे वातावरण क्या कर सकते हैं उसमें सरकार, हम अपने अपने सर हाख नहीं से अपने, यानी कि अपने शहर के लोगों से राय लेते हैं कि कैसे उसमें और कुछ परिवर्तन आ सके ना।
1: ओकरे विषय में यही बात है कि देनहाक जब एर रिक्त हो है ना, ओके जब एर रिक्त करल जाए तो ओके चाहिए जाने के कि दूर शाम है बहुत बलंग रही है कि हम लोग के नातूर। देखिए ये गोड़े लोगन ऐसे सोचे हैं कि ना कि आजे खाए पी के जब दोन कर दे, ये सब 20 बरिस आगे देखे हैं कि हम लोग के चाहिए पेड़ लगावे के, उस पेड़ में बीमारी ना हो जौने कि हम लोग के सुस्तफ हम लोग इन आदम कर सकीला, तो उस सब चीज़ पर ये सब बहुत ख्याल करे। और यहाँ पर बहुत गरीबता आई है, एक केरकी है वही दूर सामहित में हम सीखली ना कि एक मार्कस ना केरकी है या लविकलान में, वहाँ पर आदमी लोग को इतना गरीबता आई है कि वहाँ पर सबके उ देवे है के देकन कम्बल ना बोलल जा, हाँ कम्बल देवे है और खाई कभी देवे है,
0: ये सबके लिए अवेलेबल है।
1: याद बाकी वो सब चाहिए अब आगे पूछे के जाने एक्सेल सर्विस पे तो ना वहाँ से वो सब देखी तो इनको में कैसे है तब वैसे मिले, तो ऐसे ना कि सब कोई जाए के ले सके। ये सब जहाँ जाइए तो ये सब में ज्ञान हो, और ये सब के कारण हम अभी जो चीज जान ही ला, देखो हम इनर्जी कोच अभी इससे इनर्जी कोच इन कारवा मूर बाइक में जो आपके सेफ सेंट्रल फरवान में के पाँच है, जो अल्मीनियम फोलिना है तो और लेथ लैंप ना है और इनर्शी बस पारन दूसकोप, तो ये सब चीज़ में खमें तो फ्री में देवे ये सब इनर्शी बस पारन चीज़ है।
0: और जैसे कि ठंडी इस समय खूब ज़्यादा तादाद में है, तो सुनो वालों, यहाँ जो ये संदेश है जो हमारे नीदरलैंड का सरकार, जो देनहाक का सरकार जो हम सब के लिए तैयार करके हम सब के लिए रखने वाले हैं, तो शिव जी भी उसका अगर आपको जरूर इसमें सहयोग लेना है तो मालूमात कीजिए, ताकि आप जो सरकार औरों के लिए रखते हैं तो आप भी उसमें अपना और यानी कि माँ कर खबर इकफान।
1: हाँ, और ये खाली ना इनर्जी बस पारंत है धर ले आए देखे एगो इनर्जी कोच आई तो देखी कि तोर जैसे कुलकास्त बहुत पुराना है या फ्रीसर, तो वो एगो चीज़ से मेहित करके देखी वो बहुत स्ट्रोम खबर करी, तो बोली ना ये एक तू बीगो ये बहुत स्ट्रोम खबर करे तू कहानी फ्री सरों में कौन चीज हल्ले ओके बीक के एक नवाला कीनो सब्सिडी मिलेगा अभी खमीन तक जे तो के उस ना रहेगा कैसे बोले वही फास्ट पास।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, इस बात इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि हमारे घर में और पुराना टेलीविजन है और पुराना आइसकास है, फ्रीजर है रखे हुए है जिसमें कुछ जो इस समय का चीज नहीं है, जो ज़्यादा तादाद में एनर्जी प्रयोग करते हैं, तो हमारा सरकार जो आपके लिए कुछ सब्सिडीज आदि तैयार करके रखे हुए है, तो ज़रूर उसमें और खोज कीजिए। और यहाँ फाहून हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम सब भी यही आशा रखते हैं कि आपके जो हमारा और वारवाई रख तो फैब हम वो अपना रख को और पा सके। तो क्यों ना एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, और गीत के बाद हम सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने गंगा के किनारे, हमारे साथ जो तनहा शहर से, जिसके पास काफी जानकारी होते हैं कि वत ऑनस रेख्त सैन और एक वार माकन वाई ओक रेख्त ओप, तो भाई शिव जी जो यहाँ उपस्थित है और उनसे ये प्रश्न रखता हूँ कि जो हमारे शिव जी हमारे घर पे जो पुराना खटारा फ्रीजर है, कभी कभी आवाज़ उसमें से अलग सा निकलने लगता है, और जो जिसके पास अभी जो मोटा टेलीविजन है, तो उसे क्या सरकार उस पे भी कुछ सब्सिडी दे रहा है?
1: हाँ जरूर, देखो हम एक नंबर बोल सकी आगे वो जो यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सके हैं।
0: जरूर
1: नंबर। हाँ वो जो का नाम है इनर्शी बस पारे के, तो ओकर लगे जब बेल करियो तो वो पठाई गई इनर्शी कोच, तो आई देखे आपके घर में कौन सी कमी है, कितना लेत लाम्प तो नौदख है, कितना अल्मीनियम फोली वो नाप के लाई जाए, तो के एगो दुष्कलोप दे जो इनर्शी बस पारन। अब वो सब बोलते हैं कि 3 मिनट चाहिए नहाए के, हम बोली नहीं इंडिया में तो सब एक के बल्टी में नहाए सके, वो चीज़ अभी हम उस सबके सिखाई रहा कि देख तुम लोग ऐसे ही इनर्शी बस पार कर सके, एक बल्टी में खो या मोई से करिए तभी नहाए सके। हम तो नहाए ली ला, हम जा नहीं दूसर कोई के, हम जाए ला संस्था में जहाँ पर तो औरत लोग तो बोले बोले आप बोले हम ऐसे ना नहा सके, हम बोली अच्छा तुम लोग देखिए कैसे, माँ हम तो नहा ली ला माँ खुद ना हम नमरवा बोली ना इफ का एक और वो नंबर है 06 लिखियो अच्छा 54392197 उसे भी कॉन्टैक्ट कर सके हमारा अभी कर सके, तो वो इनर्शी कोच तो वो बहुत दृढ़ का बहना सब हर हफ्ता आवे है, तो वो देख के और बहुत दृढ़ का सबके तो वो सब आएगा आपके घरे माया ने फाल वो सब अभी एगो मेतर से देखी तोर कुलकास कितना स्ट्रोम खबर करे, तोर मास मशीन कितना खबर करे, इस सब चीज खमेत दनहाक सब्सिडी करे कहे के कि हम लोगन सब कोई अपन इनर्शी बस पार कर सकेला मान अबे ऐन फानत यार फिक्सर एक नहीं आई अफ थ्रोन्स फोकन यार, तो खमेत दनहाक इस सब में बहुत मदद करते हैं, तो हम लोग के चाहिए खबराई मार कर करे के।
0: सुनने वालों जैसे कि अभी आपने सुने शिव जी के ओर से, और ये जो खमीनता हम सब के लिए और सब्सिडीज देते हैं, तो जरूर मालूमात कीजिए और उनका लाभ उठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि यार आप रिकरिंग पे आप ही धड़ाक से गिर पड़े। हमारे साथ जो कार्यक्रम में सहयोग दिए और हम धीरे धीरे उस गीत की ओर बढ़ रहे हैं,

बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को जो हमारी इस बात इतनी प्रकार से अपना मन लगा के अपना समय लगा के इतने हमारा साथ देते हैं सुनने के लिए। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।

जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से

हाँ हम तो फ्रेवीलखर्स काम में रहलीन तो हम तनी देरी कैलिन, बाकी अच्छा जौन ची हमें सनिसार हम देलिन है और फिर से आगामी में हो पाई तो जौन जौन नवा नवा चीज़ हो तो हम फिर आए आप लोग के आए के बीच में फिर बोलेंगे। आप लोग के सबके नमस्कार हो।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज का कार्यक्रम में सहयोग देने वाले श्रीमान राजेंद्र सिंह जी भारत देश से, बबली आसरा जी, शिव किशुन सिंह जी और मैं हूं आपका सेवक संजय। आशा ये रखता हूं कि जरूर कुछ न कुछ संदेश आपके पास पहुंचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे।

on Hindustani Riparat tune hai. In ho ya raat, subha ho ya sham. Subha ho ya sham, din ho ya raat. On Hindustani Radio, hamesha aapke saath. सॉन्ग में पाकिस्तानी सांगर अतीफ असलम के आवाज़ में आप सभी को लिए पेश करूँगा। एंटीक हिंदी सॉन्ग कलेक्शन से मैं निकाल के आपके घर तक पहुँचाऊँगा। आप जहाँ पर भी रेडियो सुनते होंगे आपके कानों तक मैं पहुँचाऊँगा अतीफ असलम का सॉन्ग।

आतिफ असलम ये सिर्फ एक सानर लेकिन एक एक्टर भी पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फिल्मों में भी आतिफ असलम ने काम किया है। अभी एक दूसरा गीत मैं आतिफ असलम का आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं चला जाता हूँ बाबुल सुप्रियो के सॉन्ग के ओर। और बाबुल सुप्रियो ये भी एक काफ़ी मशहूर गायक है, उसके आवाज़ में आप सुनेंगे मेरी तरह तुम।

बाबुल सप्रियो और साथियों की आवाज़ में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ अतीफ असलम के एल्बम के ओर, और अतीफ असलम 2005 में बॉलीवुड का प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया फिल्म सहर में एक नंबर पेश करने के लिए, और वो था ये गीत दोस्तों मैं आपको सुनाऊंगा, वो लम्हे वो बातें अतीफ असलम के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

आसिफ असलम के आवाज में वो लम्हे वो बातें। अब की बार मैं चुन के रखा हूँ दोस्तों, सेलेक्ट करके रखा हूँ अभिजीत का एक सॉन्ग। और अभिजीत ये प्लेबैक सिंगर से पहले ये एस डी बर्मन के साथ शो देते थे, शो पर स्टेज पर गाना गाते थे। उसके बाद ये नेखरी त्वेन तख तक में जैसराज फिल्म में इन्हें ले लिया गया और ये वहाँ से शुरुआत किया अपन प्लेबैक सांगर का काम, वो भी बॉलीवुड फिल्मों में। वैसे प्लेबैक सांगर म्यूजिक कंपोनिस्ट और ऑन द नेमर भी अभिजीत है। तो अभिजीत की आवाज़ में एक दो सॉन्ग आप सुनेंगे।

अभिजीत गुलशन कुमार और एरदे बर्मन के साथ शुरुआत किया दोस्तों, जैसे मैंने कहा तो किशोरदा का गीत गाते थे, उसके बाद अपन सिलेक्शन बॉलीवुड फिल्मों में पेश किया। एक बार फिर अभिजीत के मीठी आवाज में आप गीत सुनेंगे, अभिजीत बच्चा चारिया।

अब की बार दिल में हो तुम। बप्पी लहरी का म्यूजिक है और अरमान मालिक के आवाज में आप गीत को सुनेंगे। अरमान मालिक सॉन्ग राइटर, इंडिया से सांगर, म्यूजिकांत, प्रोड्यूसर और एक्टर। ये सिर्फ हिंदी में लेकिन तेलुगु, एंग्लिश, बंगाल, कनाडा, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और मलयालम में भी अपन गीत पेश किया है। अरमान मालिक के आवाज़ में गीत सुनेंगे आप।

अब की बार दोस्तों तू कौन है, तेरा नाम क्या है? साधना सरगम एंड मिस्टर सानू या कुमार सानू, दोनों के आवाज में आप गीत सुनेंगे। अक्षय कुमार, रेखा, रवीना टंडन, खिलाड़ियों के खिलाड़ी में काम किया।

सीधे साधे राजन, आप सुन रहे फाहन हिंदुस्तान रेडियो राजन के साथ श्रिया घोषाल एंड पद्मश्री उदित नारायण। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। जब जमाने की सारी खुशी मिल गया दोस्तों, तो और जमाने में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कमी नहीं है दुनिया में जब सारी खुशी मिल जाए तो।

में तुम मिले जिंदगी मिल गए, अभी भी किसी ने सीढ़ियों में तार किया कहा, पुराने गाने में जो मजा था अभी के गाने में कहा। दोस्तों लोग है जो पुराने गाना से मजा लूटते हैं, और लोग जो है वो नए गाने भी चाहते हैं, तो पुराने नए गाने सब चलाना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी पुराने गाने चलाते हो, कभी कभी नया गाना आपके लिए पेश करता हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपको मालूम है वो दिन वो तारीख आपको याद है या नहीं? आपको ज़रूर याद होगा। ये पहली बार जो मोहब्बत होता है वो हमेशा दिल में जाकर समा जाता है और कभी दिल से नहीं निकलता है। ये चीज़ मैं सोचता हूँ जैसे सभी के साथ होता है। दोस्तों पहली पहली बार मोहब्बत की है, किसी ने ये बात नहीं कह सकता है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है। मोहब्बत एक चीज़ है जो हर एक इंसान एक बार जरूर किए होंगे, तो आप भी किए होंगे, मैं भी किया है, वो भी किया है।

Ja, Pika Happy Station, Fahon Hindustani Radio. काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से। हे अपना बनाने की कसम खाई है मिस्टर सानू एंड अनुराधा पौडवाल दोनों के आवाज़ों में आप गीत को सुनेंगे।

फिल्म सदक का सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। संजय दत्त और पूजा भट्ट फिल्म में काम किया। संजय दत्त दोस्तों बीते हुए दिनों में ये आदमी जेल यात्रा, इसे मैं अच्छा कहा जेल यात्रा या जेल कातिल कोई बात नहीं, ये जेल गया और ये फिर वापन कफालक था। तो कई महीना ये जेल, लगभग 8 महीना ये जेल काटा। लेकिन उन दिनों में सलमान खान इनका बहुत मदद किया, संजय दत्त का मदद उन दिनों में सलमान खान बहुत किया। अब की बार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मिस्टर सानू वंस अगेन, लेकिन अब की बार नहीं एक बार फिर अनुराधा पौडवाल के साथ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

रुलाना रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, मगर रुला के जो मना ले, रुला के जो मना ले वो बाप होता है, और रुला के जो खुद रो पड़े वो सिर्फ माँ होता है। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए।

बड़ी उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए। साथी किस तरह से मिलेगा दोस्तों? हम लोग के तो हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पर रईस बिरो है, फ्लेश वेंकल है, तरकारी दुकान है, कपड़ा दुकान है, लेकिन हीलक्स बिरो मुझे पता नहीं है या नहीं। अगर होगा दोस्तों तो आप फाहन हिंदुस्तानी से कॉन्टैक्ट करके और प्रचार कीजिए, ये हीलक्स बिरो के जरिए साथी ज़रूर मिल जाएगा आपके करीब। आपके करीब हम रहते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग साजन की बाहों में से मैं निकाल कर आपके लिए पेश किया। दोस्तों ऋषि कपूर एंड टब्बू इस फिल्म में काम किया। कभी ये चांद सितारे जमीन पर रहते हैं। आपको मालूम है कि ये जमीन पर कितने चांद सितारे रहते हैं? अगर मालूम नहीं दोस्तों तो खोज कीजिए, यकीन कीजिए, देख लीजिए, तो आपको चांद सितारे जरूर नजर आएगा। जिंदगी को प्यार बिना।

दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी बड़े जतन से कमाई है। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव ना गहराई है।

वास्तव में जब दिल लेना है तो दिल फिर देना पड़ेगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बात में सोचता हूँ कि ये सही होगे, लेकिन जो गीत मैं पेश करूँगा वो है ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का।

कोई मेरे दिल में है, मुझे तो ये एहसास नहीं होता है कि आपको एहसास है कि कोई आपका दिल में है। मैं सोचता हूँ अगर होगे तो आपको जरूर एहसास होगे। कोई मेरे दिल में है, अनुराधा पौडवाल एंड मिस्टर्स।

यहाँ से आप सुनेंगे सितारों का सफ़र। आज का प्रोग्राम है सितारों का सफ़र, में मैं गसल का गायक या गसल का फनकार पंकज उदास के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। पंकज उदास पैदा हुआ 1953 राजखत में, परिवार बॉम्बे से, परिवार बॉम्बे चला आया और म्यूजिक अकादमी में तबला बजाने को सीखा पंकज ने। पंकज को बचपन से गाने का बहुत से शौक था। मास्टर नौरंग से ये संगीत सीखा। उषा खन्ना ने पंकज को फिल्म कामना में गाना गाने का एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुआ तो पंकज ने फैसला किया कि वो फिल्मों में बहुत कम काम करेगा और पंकज शुरुआत किया गजल गाने में और उर्दू भी सीखा। बड़ा भाई ने कहा पंकज से कि अगर गजल में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो मेहंदी साहेब और बेगम अख्तर को सुनो। पंकज साहेब ने बहुत से पंकज जी ने बहुत से गजल पेश किया है, तो बहुत से गजल गाया है और सभी गजल में से एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी निगाहों से, पंकज उदास की आवाज़ में।

गजल का फनकार पंकज उदास कनाडा को चली गई और वहाँ जाकर उन्हें महसूस हुई कि यहाँ के लोग को हिंदुस्तानी म्यूजिक कितना पसंद है। फिर पंकज ने मन बना लिया कि ये अपना देश में अपना नाम करेंगे और काफ़ी टाइम गजल सीखने के बाद ये वेसन में काफ़ी गजल के कॉन्टेस्ट किए नीखंतिंग तख्तक और नीखंतिंग तख्तक में अपने पहला गजल के आलमन तैयार की जिसका नाम था आहट। फिर उसके बाद वो एक गाना तैयार की एक गजल और वो था चिट्ठी आई है। इस गाने से ये तुरंत पॉपुलर हो गया दोस्तों। एक बार पंकज उदास एक बेनेला से फ्लिक था तो एक शो देकर घर जा रहा था और जो फ्लिक थे जब प्लेन में बैठा तो राज कपूर जी वहाँ प्लेन में बैठा था तो राज कपूर के जाकर उनका पाँव पकड़ लिया पंकज। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं पंकज जी ऐसे मत करो आप एक बड़ा गायक हो। तब पंकज ने कहा नहीं नहीं मैं कोशिश करता। तो राज कपूर ने कहा आपका गीत जो है चिट्ठी आई है वो एक हिट एक बड़ा सॉन्ग हो गया है। तो वहाँ पर जाकर पंकज उदास को महसूस हुआ कि कितना तारीफ किया जा रहा है मेरा ये गीत पर। और ये गीत दोस्तों मैं सोचता हूँ ये गीत हमेशा पॉपुलर रहेगा, इसलिए गीत में जो बातें हैं मैं गीत को सेलेक्ट करके रखा लेकिन आज नहीं पेश करूँ इसलिए कि गीत बहुत लंबा चौड़ा है। एक दूसरा गजल मैं आपके लिए चुन के रखा हूँ और मैं भी पेश करूँगा। तो चिट्ठी आई एक पॉपुलर हिट हुआ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गजल गाया जाता था वहाँ वहाँ पंकज उदास हमेशा उपस्थित होते थे और उनका गाना भी हमेशा चलता था। पंकज उदास की आवाज़ में एक दूसरा गजल आप सुनेंगे। पंकज उदास दोस्तों आप जानते हैं वो सुरीनामदेश भी अपन शो दिया है और हॉलैंडदेश में भी आकर अपन शो कितने कई बार मैं सोचता हूँ दो बार वो सुरीनामदेश गया है।

क्या तारीफ है, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। गसल का फंकार पंकज उदास को पद्मश्री का पद्मी मिला, दिया ट्वीडेशन शैस्त्र में पद्मश्री का ऑनर्स कैडिंग। और पंकज उदास का पिता का नाम, उसका पिता का नाम थे खुशीदास उदास और माँ का नाम थी झूठी झीती झीती बन। पंकज को दो भाई है जिन्हें जिनका नाम है मनहर उदास, वो भी एक गायक है। और दूसरा भाई का नाम है निर्मल उदास, एक गजल गायक। और बीबी का नाम है फरीदा उदास। इन दोनों को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है नयाब उदास और रेवा उदास। दोस्तों, दुख की बात यह है कि 26 साल फरवरी सन 2024 को 72 साल के उम्र में पंकज उदास की मृत्यु हो गया, दुनिया को छोड़ चल गए। और बहुत दुख की बात है दोस्तों, पंकज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जब लिया जाएगा बड़ी गर्व से लिया जाएगा। उसका दाह संस्कार परिवार रिश्तेदार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम भी सितारे मशहूर थे वहाँ पर।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर का लाइव सॉन्ग आप सुनेंगे।

महेंद्र कपूर, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में बदल जाए अगर माली। दोस्तों, जॉय मुखर्जी सायरा बानो के साथ फिल्म शागिर्द में काम किया। आप ये फिल्म देखे होंगे तो इस फिल्म एक बहुत जोक फिल्म था, इसमें बहुत हंसी था और जॉय मुखर्जी और सायरा बानो अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनेंगे।

मुखर्जी और आशा पर सायरा बानो दोस्तों दिलीप कुमार का बीवी सायरा बानो के साथ फिल्म शागिर्द का ये सॉन्ग अभी आपने सुना। धर्मेंद्रा दोस्तों धर्मेंद्रा और अपन दूसरा बीवी, जी हाँ लोग कहते हैं दूसरी बीवी, तो मैं कहा दूसरा बीवी, अपन दूसरा बीवी हेमा के साथ वो काम किया फिल्म चरस में। अभी गीत के बाद मैं कुछ धर्मेंद्र के बारे में आपसे बताऊंगा।

0: दोस्तों धर्मेंद्र, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र का तबीयत जो बिगड़ा, तो धर्मेंद्र अपना दयाद जो है, जितना धन दौलत है, वो अपन दो बीबियों के अंडर बांध दिया दोस्तों। तो एलक है, एलक मीन्स दोनों बीबियों का पूरा बांध दिया। और धर्मेंद्र का दौलत जो है 560 करोड़ रुपए। तो धर्मेंद्र अपना पहला पत्नी और हेमा मालिनी को दोनों को 200 करोड़ दिए। तो हेमा मालिनी को 200 और अपने पहले पत्नी को भी 200 करोड़। और अपनी चार बेटियां, धर्मेंद्र को चार बेटियां है, दो हेमा के साथ और दो बेटी है प्रकाश कौर के साथ। तो चारों बेटियों को 107 करोड़ दे दिए और 60 करोड़ रुपये। और अपना फार्म जो है, अपना फार्म हाउस जो है, वो दोनों अपने ये अपने दोनों पत्नियों में बात दिए, ये लगा। और बच्चे सोनी दियोल और बॉबी दियोल दोनों को अपना प्रोडक्शन हाउस दे दिया। और धर्मेंद्र को कई शहरों में रेस्टोरेंट है, उसका कीमत लगभग 5 करोड़ है। और दोनों भाई के हिस्से में ये दोनों, ये सभी रेस्टोरेंट जो है, ये दोनों भाई के हिस्से में आया। और धर्मेंद्र को 4 बड़े-बड़े बंगले हैं जो अपने दो बीबियों को बात दिए है दोस्तों। तो देखिए धर्मेंद्र अपन दो बीबियों को कितने प्यार करते हैं कि लड़कन को कम दिया है और अपन बीबी को ज़्यादा दिया है। इसलिए कि बीबी से तो लड़का होता है ना, जब बीबी नहीं है तो लड़का कैसे होगा। जॉनी तू क्या सोचे है, सही बात है कि नहीं
1: भैया? जो मसीह ना है वो तो कैसे चले।
0: वही बात है जॉनी, थैंक यू।

दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। हाँ मुझे तो पता नहीं हम क्या करें, कॉफर हुआ गीत हमने सुने, हाँ कहाँ चला गया, तो ये बहुत जल्दी से घुसक जाता है। आकृत मेहरा से हमने सुने हैं।

0: के सवरिया ससुर घर जाना, अमृता से हमने और यहाँ से सुने सुंदर सा गीत आज की इस तारीख में। आपको बहुत सारी खुशियाँ खुशनसीबियाँ पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।
1: खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में

0: Music is the messenger of love.
1: Yes, yes, that is the Raymond Ramnaraini से इस बार हमने यहाँ से सुने सुने वालो और आगे आपको लेकर चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये जरूर कहूँगी, जरा से सुनिए, गौर करिए।

Doe niet zo moeilijk, hou het simpel. Doe niet zo moeilijk, hou het simpel. Dat scheelt elke dag al gauw een rimpel. तेरे मेरे बीच कुछ भी आखरी नहीं है, तेरे और मेरे बीच कुछ भी आखरी नहीं है, सिवाय आखरी सांस के। इसलिए कहती हूँ कि हर पल का आनंद ले ले, हर पल का आनंद ले, क्योंकि खुशियाँ कभी इंतजार नहीं करते।

वीरू और मोतीमाला, मोतीमाला बेंदा भोला सिंह की आवाज में हमने यहाँ से सुने हैं कि एक बार जरा तू कह दे। Soms kan iets jaren, maanden of dagen duren. Soms kan iets jaren, maanden of dagen duren. Maar alles wat voorbestemd is, zal zijn weg weten te vinden en zal zijn doel zeker bereiken. एक ये भी बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर हम जरूर से आपको सुनाएंगे कि बनना है तो नमक जैसे बनो, बनना है तो नमक जैसे बनो, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल करेगा और ना आके बगैर चलेगा। आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

चल भीम के आवास में। सुहानी रात ढल चुकी, सुनाई हमको अनिल भीम जो इस दुनिया में अब नहीं है, पर अच्छे अच्छे यादें अच्छे अच्छे गीत हमारे हाथ छोड़ गए हैं। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए, अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। وخنی تات مارخن مارخنیت فنو لیف اینت هیدن

गौर से याद करेगी दुनिया तेरा मेरा और अफसाना। हम देखे जॉन और दिनेश सिद्धार्थ ने सुनाई

ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको, ऐसे जियो कि अपने आप को पसंद आ सको। दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। कहते हैं कि loslaten is achterom kijken zonder spijt. ये तो बात सही है। Loslaten is achterom kijken zonder spijt. Vooruit kijken zonder verwachtingen en het leven.

0: कुदरत का है करिश्मा एक दूसरे से मिलना, दुनिया के सरसमी पर किस्मत को आजमाना। ये प्रेम का जहां है हर किसी ने भूल जाना, आपस से है मोहब्बत, आपस से है मोहब्बत ये धर्म है सिखाता। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार, अरा बरसो। 2 मिनट रह गया है 4 बजने में, फाहन रेडियो पर आप चुन है और यहाँ से आरंभ होता है प्रोग्राम गीतों का संगम। परिवार घर में दुख है दुख में साथ देते हो, जहाँ पर खुशियाँ है बहुत से बधाई पेश हो। शांता का एक मशहूर प्रोग्राम आपने सुना, हे रद्दां की वेल। प्रोग्राम गीतों का संगम में अब से लेकर 4:30 बजे तक मिले जुले गीतों के साथ मैं आपका दिल बहलाऊंगा। उसके बाद 4:30 और 5 के अंदर जो आइटम आज रहेगा वो रहेगा तू। हर एक गीत जो तू से शुरू होता है लगभग 8 घंटे तक पेश रहेगा, और 5-6 के अंदर एक उप प्रोग्राम रहेगा दोस्तों, सॉन्ग चलेगा, हो सकता है चटनी वगैरह वगैरह। आपको सिर्फ फाहुन पर चुन करना है, चुन रही है तो आपको पता लग जाएगा किस तरह का प्रोग्राम आप सुनेंगे। 6 बजे के बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनेंगे, खासकर उनका न्यूज ब्रेक जो है आप जरूर सुनते रहना। प्रोग्राम में छोटे छोटे खबरें, मौसम के समाचार, फीलर रहेगा तो फीलर ब्रेक और स्पॉट ब्रेक तो आप सुनते रहना। साहब यूसुफ सामने बैठा हुआ है दोस्तों, और उज्जर चश्मा जैसे गांधी, महात्मा गांधी, तो यार मैं गैर गांधी हूँ। हमेशा की तरह दोस्तों हमारा साथ देता है, आज ही मेरे सामने बैठा हुआ। हर एक काम जो आपके रेडियो के सरे कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 3 5 2 8 2 4 0। हमारा तार का नंबर है। और जब शुक्रवार है तो हॉलैंड देश का सबसे बड़ा बाजार जो है हाक्स मार्ग खुला हुआ, अगर आप बाजार पे चल रहे हो या बाजार जाना चाहते हो तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपन एक दम जो है सारा संभाल के रखना, और अपन एकदम संभाल के रखना, और जो माल आपको खरीदना है सोच समझ के भी खरीदिए दोस्तों। बाजार का सामान मैं नहीं कहता कि अच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर रख देते हैं अच्छा अच्छा चीज, नीचे सरल पकल चीज रख देता है। ये सब बात सही है या नहीं?
1: ये सही बात है भाई।
0: कभी तो संगे भैल की तू
1: हम बाजार में तो किनबे ना करेला
0: ना?
1: ओके, सुपर मार्केट जाएगा, देख के जो काम है वही ले लेगा। और सच्चे आगे धर दे मोई वाला और पीछे खराब, बोले अच्छा मैं 10 गो दे तो माती ऑफ 4 गो अपरा, तो 2 गो मन
0: मैं यूसुफ तू तो तू बोल रहे तेरे बात सही है, मार तो मनाई वही मनैया घरे जाए आधा सामान सर फिर वो हफ्ता फिर जाए बाजार।
1: हाँ फिर वही के नहीं वही जाएगी
0: जैसे को फसला आफे हैं बाजार
1: ना, उस अंदर देखे प्राइस बहुत सस्ता तो।
0: और हम बाजार पर देख लीजिए, हम मछली बेचा है तब सबन जो 6 बज जाए तो मछरियन बाकी में कार्गो इसे रख के अगवा रख देते, मने ओके बीन के ले जा,
1: बीन के ले
0: जा। हाँ
1: ओ
0: या
1: नहीं दैट हैबिट नहीं मैं खमान
0: तो कहियो जाइए सियासी हूँ सियासी तो फिर आप दिल में चले तो रखिए सबन मछलियों में रखे मने उठा ले जा।
1: सो
0: या वो भी होता रहता है बाजार में। बाजार में काका नहीं, कौन चीज हो है बाजार में,
1: सब चोर चले, चोर चक्का सब चले।
0: यूसुफ इरमान तू बतिया है, मौसम तो अच्छा है, का सोचे है वीकेंड कैसे हुई, कुछ न प्रोग्रामा है?
1: हमार प्रोग्रामा तो है देखे बिहान के, मैं एक प्रोग्रामा है बे 23 और सोंदा के एस्टा पेंसा लाख तो इधर पेंसा देखा काम निकरब
0: ना
1: वन वेयर तो खूब
0: या अच्छा वेर है तो ये तो सन नाम के वेट चाहे कुछ करे के या सीकर सीकर सीकर यूसुफ अविका का फुटबॉल भी नक्चा है ना
1: एलएफयू नहीं
0: या एलएफयू नहीं शुरू हुए और हम सोचे ट्वेन ट्वेन तक यूनिक न्यूजीलैंड खेल या पाँच से तक दस बजे रात के या तब बट या खेलवा मिल के देखो कोई तो
1: या है देखो कोई ढेर इंटरेस्ट ना है अब की वही का के
0: ना का भाई का भाई ये सब
1: तो 700 से 1000
0: या मगर
1: 1500 मगर आदमी लोग बड़ा मुश्किल से भी फिशन पावे जाए के
0: ब्राजीलियन भी कहा था हमारे संगठे अगर देखे तो आयलैंड से राजन बोले हम लोग सब खेल देख ली मैं बोले एक खेल हम घर हुआ होटल में से तक ली तब बोले हमें सबसे मुँह लेकर होटल हमसे खेलवा देखे के बोले वहाँ जो दूर जाइए बैठिए
1: कुछ बैठना नहीं
0: हाँ अब बोले होटल से सबसे सामने और मने बगले बगले में खाए पिए सो बोले हमें और मुँह लगल ना हमने बोले लोग ने चाहे जाए के मार या जैसे हम सुनली से बताएला
1: देख अब हैगा सेनेगाल के साइड उस सबके पैन द्री क्वाट जो नकर सी पोर्टर्स हैं उस सब ना पाइस फिसम तुरंत ना दे सकते हैं
0: हम सुनी फिसम मंगा है तो
1: नहीं समुते एस तीन दोसन तो फिफ्टीन दोसन डॉलर स्टार्ट तब फिसम पाइए और जाए लेके फिर तापन ले लिए सोचे उस सब खाल हुए रह जाएगा उस सब आदमी अपन कारोबार छोड़ के ना आएगा तो सैन नहीं तो सब गरीब आदमी ना है जो 15,000 ऐसे दिन के धर दे
0: मैं यूसेफ एगो धनी मन है जो उनके ढेर पैसा है वो मांगे डर अपन दुई को लड़का के अमेरिका में बसा है तो डेर तक डेसन दू जने भर दी तो चाहे ना जाए पैसा वाले हमें लुका जाए वो तो कमा ली डी बड़ी इसमें पैसा
1: कमा लिया मार सोवेर तक नहीं बपाल तो देर सही वही का एकदम उतालस ओपर से
0: आलस में तो ऊपर से और अभी चाहिए खल एक माह तक अभी जब वही का डोन था तो चाहिए भी खड़े जाएगी
1: वो तो है
0: या
1: मार वो हर एक वीका में आदमी लोग
0: चाहे जहाँ जब हॉलैंड में वीका रही तब मन ही फ्रूस हो जाए डेचलैंड अब देशलाम में तो हलान भागे चुके हैं सीजो और सग्रह हो है
1: दुनिया भर में
0: या मैं डंके वाली यूसुफ अभी बैठा रही है शायद अगानी में तो से फिर कुछ बातचीत होगा तुझमें रब दिखता है तुझमें मैं रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ

बस बस रब ने बना दी जोड़ी। मौसम के समाचार दोस्तों, vanmiddag blijft het droog en zonnig. Vooral in het noorden komen ook wolken voor. Het wordt op veel plaatsen 24 tot 26 graden. Ratrika mausam 12 graden rahega dosto. Het koelt af tot 12 graden. Als je weekend hè, kal shaniwar hai to maximum temperatuur 28 graden rahega. Weekend zondag, rabiwar ko 25 graden, और वीकेंड के बाद सोमवार को 27 graden, मंगलवार को 26 graden, और बुधवार को 21 graden होने वाला है। ये जमी गा रही है, अमित कुमार के सॉन्ग है, एयर डे बर्मन के म्यूजिक पर।

मेरी तरह तुम भी प्यार करके देखो ना, वास्तव में दोस्तों अगर प्यार नहीं किया तो कैसे आपको मालूम होगा कि किस तरह से प्यार होता है। कभी कभी प्यार तो खुद हो जाता है, फिर भी उन्हें कुछ न कुछ करना पड़ता है।

हाय हाय हाय, देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया। क्या हसीन घोड़ी है कि उन्हें देखकर तुरंत प्यार हो गया है। दोस्तों, घड़ी को देखता हो तो आइटम का स्टार्ट का समय हो गया, 2 मिनट बीत गया है, 4:30। यूसुफ हमें एक भाव ताके है, बोले राजन कब तो शुरू करिए, इसलिए कि यूसुफ पहला सॉन्ग मांग के है अपन प्यारी प्यारी मासुका शीला के लिए, तुम मिले दिल खिले, यूसुफ के ओर से शीला के वास्ते।

बस सही बात है यूसुफ, चॉइस करके रखा दोस्तों अपन प्यारी प्यारी मसुका सीला के वास्ते, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। सही बात है, सही बात है। छोटा सा खबर है, एक फिल्म जो है अमरूप वैस का, और फिल्म का बोल फिल्म का नाम है फावाकामी माती। एक्ट्रेस शर्मा, एक्ट्रेस शर्मा शिनाफुंग ये फिल्म को लिखा है। तो ये फिल्म कटखोरी डिस्फेरसिटी और सुसिटी पर प्राइस पाया है और यूरोपा में भी बहुत नाम कमाया है। अगर आप इस फिल्म नहीं देखे होगे तो ज़रूर इस फिल्म देख लेना। फावा का मिम्माती फिल्म का बोल है और ये फिल्म जाए फॉर ऑना फांकले नाम कैसे लोग यहाँ पर आयल है और किस तरह से यहाँ पर अपने को बसा है और आप कुछ बनाया है या नहीं, ये सब आपको फिल्म में देखे को पड़ेगा। तो फावा का मिम्माती आप इस फिल्म जरूर देखते रहना क्योंकि फिल्म एक प्राइज जीता है। तू अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर का आवाज़ में वंस अगेन फिल्म हमराज का सॉन्ग आप सुनेंगे और ये गीत है श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए जो आलकमार में रहता है।

श्रीमान अंद्रे राजकुमार के लिए सॉन्ग अभी आपने सुना, तुम अगर मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम का आइटम चल रहा है दोस्तों। और ये सॉन्ग सभी लॉफर्स के लिए, मौसम तो अच्छा है और जो भी करना है सोच समझ कीजिए, वीकेंड भी है दोस्तों, जो भी करना है सोच समझ के। डेंक टू केयर ना आशीर्वाद।

0: तू मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, 13 मिनट रह गया है इस वक्त पाबिल में, 13:04:05 फाह और हिंदुस्तान रेडियो पर आप चुन है, आप ही का हैप्पी स्टेशन है और हर एक काम जो आपको रेडियो के सरे कराना है कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 3 5 2 2 8 फिर सिर्फ तार का नंबर है। नशीली रातों में क्या बात है दोस्तों,
1: कहाँ ये बताइए नशीली।
0: जी हाँ देवानंद को मैं देखता हूँ, तू कहा ये बता, हैंगलो के रहने वाले श्रीमान चंद्र रघुनंदन की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए।

हाय मानना मेरा दिल दीवाना हैंगलोक के रहने वाला श्रीमान चंद्र रघुनंदन की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए बड़े प्यार और दुलार के साथ ये सॉन्ग पेश किया गया फाह हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन है। प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों, और यूसुफ सामने बैठा हुआ है, एक से एक गीत खोज के हमें देवे है यूसुफ, और जो एक यूसुफ एक गीत खोज दे तो जो अच्छा गीत रहे है। अब से यूसुफ बोले है तू आ गए हो नूर आ गया है।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे, इशहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे इशहार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वादा, धड़ बड़े गिर ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, मैं राही भटकने वाला हूँ, क्या जाने मटवाला हूँ, माइटी मुकेश की आवाज में।

मेरा ही भटकने वाला हो, कोई क्या जाने मतवाला हो। भाई टी मुकेश की आवाज़ में भी ये गीत को सुन रहे थे। आइटम जारी है दोस्तों, यह प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है और अब की बार फिल्म चेहल तीफ का एक गीत है, रुला के गया सपना मेरा, नाइटिंगेल लता की आवाज़ में।

हंसी एक नखमे, हंसी के नखमे गाते रहो, हंसी के नखमे गाते रहो, वक्त निकाल कर, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहो। क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, क्या ज़रूरी है अब सर झुकाने को, जब तू मेरा साथ न दे सको।

खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है। पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

आरंभ होता है सितारों का सफ़र, और सितारों का सफ़र के प्रोग्राम में आज शाम को मैं रणबीर कपूर के बारे में कुछ बातचीत करूँगा। रणबीर कपूर, पिता का नाम ऋषि कपूर और माता के नाम नीटू सिंह कपूर, पैदा हुआ 28 सितंबर 1988 मुंबई इंडिया में, शादी किया आलिया भट्ट के साथ यार तुई जैसन तुए में। रणबीर कपूर के घर पर हमेशा प्रॉब्लम झगड़ा होते रहते हैं पिता माता से, तो इसलिए रणबीर कपूर पिता से बहुत दूर रहता था, पिता से बहुत कम संबंध था रणबीर कपूर से। लेकिन बात यह हुआ कि रणबीर कपूर पिता के साथ असिस्टेंट फिल्म आ अब लव चले में काम किया, उसके बाद ये दोनों का प्यार फिर मिल गया और बाप बेटा दोनों फिर प्यार से जीते थे। रणबीर कपूर फिल्म सौरिया में असिस्टेंट का काम किया, और बनिया लीला के साथ असिस्टेंट का काम किया। उसके बाद पहला फिल्म तुई जैसन सीफ में फिल्म सवरिया में आया। तुई जैसन दैरथिंग का फिल्म ये जवानी है दीवानी, ये इंडिया बॉलीवुड का एक फिल्म था जो सबसे ज़्यादा नफा अंदर लाया, सबसे ज़्यादा पैसा अंदर लाया। रणबीर कपूर का एक फिल्म का सॉन्ग मैं पेश करूंगा, फिल्म बर्फी जो भी एक हिट फिल्म निकला उसी फिल्म का सॉन्ग आप सुनेंगे।

रणबीर कपूर, रणबीर का कपूर का कहना हुआ कि उसका फिल्म जो टूरिज्म दैरती में बना, ये जवानी है दीवानी, ये सबसे बड़ा फिल्म जो आतिल को बनाया इस फिल्म है। उसके बाद फिल्म रंजीता, वो भी एक बड़ा हिट फिल्म था जिसमें बड़े बड़े एक्टर ने काम किया, जैसे कि अजय देवगन, नाना पाटेकर, अर्जुन रामफल और कतरीना कैफ। रणबीर कपूर दोस्तों, एक कपूर परिवार, कपूर का फिल्म दुनिया का बड़ा परिवार कपूर का एक क्लाइंट हूँ जैसे हम कहते हैं। तो ऋषि कपूर फिल्म एक्टर था पिता, माता भी फिल्म एक्ट्रेस था। अब रणबीर कपूर इंडिया बॉलीवुड का एक टॉप एक्टर है। बात यह है दोस्तों कि संजय दत्त एक फेस था, एक त्यौहार था, एक पार्टी था, तो वहाँ पर रणबीर कपूर बैठा था और संजय दत्त आया अंदर। फिर रणबीर कपूर को कहा कि आपका चाल स्वभाव जैसे लगता है तो आप एक्टर का कामिल नहीं हो, एक मानल का रोल, एक मर्द का रोल आप नहीं अच्छी तरह से अदा कर रहते हैं और नहीं कर पाएंगे। तो रणबीर कपूर को इस बात से गुस्सा हुआ दोस्तों, और हमेशा जब रणबीर कपूर को प्रॉब्लम होते थे तो पिता के पास जाते थे ऋषि कपूर के पास, तो ऋषि कपूर ने जाकर बातचीत किया संजय दत्त से और वहाँ से फिर आपस में लोग मिल गया। लेकिन एक दूसरा बात और है, एक पार्टी, एक क्लब में पार्टी था और वहाँ पर सलमान खान बैठा हुआ था और रणबीर कपूर अभी फिल्म में काम नहीं करते थे, लेकिन पिता एक पॉपुलर एक्टर था तो इसलिए रणबीर कपूर जहाँ जाते थे तो वहाँ बड़े बनकर बैठे थे और बड़ा बड़ा बात करते थे। तो बात क्या हुआ दोस्तों, रणबीर कपूर और सलमान खान दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सलमान खान रणबीर कपूर को एक लपर एक झापर मारा दोस्तों। तो रणबीर कपूर तुरंत घर पर गया, पिता से कहा कि देखो इसी से बात हुआ। ऋषि कपूर ने रणबीर कपूर के साथ तुरंत गया सलमान खान के घर पर और सलमान खान से कहा आपने क्या किया। सलमान खान ने कहा भाई ऋषि जी, मैं नहीं जानते थे कि आपका बेटा है। तुरंत पकड़ कर रणबीर कपूर को गले लगाया और कहा कि आप मेरा बेटा हो, ये कैसे हो सकता है। तो ये दो बातें दोस्तों आपको ख्याल रखना चाहिए कि बात यह है कि बहुत से लोग हैं जो फिल्म एक्टर का परिवार होते हैं तो जहाँ जाते हैं तो अपन हड़ताल करते थे, और वैसे भी संजय दत्त का चाल स्वभाव जो है तो आप जानते हैं किस तरह से। एक सॉन्ग हम सुनेंगे फिल्म रॉकस्टार, रणबीर कपूर का फिल्म।

रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का रिलासी या प्यार मोहब्बत था दीपिका के साथ, उसके बाद कतरीना कैफ के साथ 6 साल तक ये दोनों साथ थे और बड़े बड़े फिल्मों जैसे ने जो काम किया, जैसे कि फिल्म रॉकस्टार, बर्फी, रंजीता, ये जवानी है दीवानी। रणबीर कपूर को 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला, फिल्म सवारिया, फिल्म कहानी, फिल्म रॉकस्टार, फिल्म बर्फी और फिल्म संजू में इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रणबीर कपूर का बड़ा स्पोर्ट है फुटबॉल दोस्तों, और ये आन फूडर है ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब का। और वैसे तो रणबीर कपूर दो नासी स्कैंकिंग देता है, मिली और खानी शास्त्री को बहुत से स्कैंकिंग देता है। रणबीर कपूर मुंबई में रहता है अपन बीबी आलिया भट्ट के साथ दोस्तों। और यहाँ तक था रणबीर कपूर का छोटी सी कहानी।

Kala na jaane ooch neech, kala na jaane jaant, Saraswati Mata dije humko apni aashirwaad de. तमाम रेडियो फाउन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरे नाम सत श्री अकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम

आज शुक्रवार दोस्तों, फ्राइडे 22 मई हो चुका है और मौसम देखा जाए तो बहुत गर्मा गर्म मौसम है। फेसबुक के माध्यम से आज भी हम तैयार है। अभी आप लोग हमारा कुलेखा साथी राजन द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है, श्रवण किया है, यही आशा उम्मीद लेकर कि आपको उसका प्रोग्राम जरूर अच्छा लगा होगा। तो यहां से हम आप लोग को लेकर चलते हैं देश और विदेश का समाचार की ओर।

दोस्तों, आप जहां भी हो खुशियाल रहना। ये जॉनी का यहां से उसका पैगाम है। तो यहां से हम तुरंत लेकर चलते हैं अपना देश सूरीनाम की ओर, उसके बाद में और देश की समाचार आपको हम जरूर सुनाएंगे। हमारे मौसीलोन मौसालोन खबर आज काफ़ी है। और जब खबर है तो आप लोग को हम न सूरीनाम लेकिन और देश की बातें समाचार हिंदुस्तानी भाषा में, नीदरलैंड भाषा में, निंगरे के भाषा में और रकम भाषा में आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो दोस्तों, आओ चला जाए हम लोग सूरीनाम की ओर। सूरीनाम में दोस्तों बातचीत ये हो रहा है कि लांटी के जो गाड़ी है, मशीन है, लांटी के अपराध जो है, लांटी के बोले कि जो सामान है, तो कितनी जनता है भैया उसे बहुत बहुत मिसब्रोक कितना करे हैं। और कितना है जो उसे सैनक ना बोले ना लांटी बोले ला विनती वाई लांटी पाई, तो बोले लांटी चीज है चाहे टूटी और चाहे रही बोले हमें का। ऐसे बातचीत हो रहा है एगो इजुसु ओतो के बारे में। हमारे दोस्तों इजुसु तो जाने हैं नाल लावला भैया क्रेन वाहन के बातचीत हुए हैं, जो एक दोस्त के नाम मिले भैया हजारन से मिले हैं। एगो करिया इजुसु डीमैक्स भैया, तो ये गाड़ी जो है सूरीनाम के है, लांटी के ओतो है। तो लांटी के इतना मोई इसुसु डीमैक्स भैया जो 20-25 हजार में मिले है, यूरो के बातचीत डाला के बातचीत हो रहा है। तो इतना महंगा गाड़ी भैया लांटी के बिगड़ल रहा, तो कम करता रहा मिनिस्ट्री फॉर आर्बेट वेरखलीखन है एंड यू साखन के। तो ये गाड़ी भैया कुछ भैल रहा, तो कम करता ले गए ये गाड़ी बनवावे गैल है बनवावे भैया। और जो गैल है बनवावे तो गैल है यो तो वह बनवावे नहीं फिर तक यार के एक आदमी, और गैल एगो मोन्तेर के देई से गा वो तो वह बनवावे के ब्लूमन फेल्ट वैक में कहीं एगो मोन्तेर है, तो वो तो वह गैल ओके देई से बनावे के ब्लूमन फिर यूर ब्लूमस्ट्राट ब्लूमन फेल्ट वैक में। तो जब गैल है बनवावे तो बुधवार के ई गैल है ओतौवा लेवे, तो ओतौवा ई बुधवार के गैल है लेवे। और इतना महंगा गाड़ी ले के पोतौवा ले के अपी आदमिया जा है उस डाक के को पिकअप, तो ई गैल है फिर यूर ब्लूमस्ट्राट में, जिस ओतौवा दे रहा बनावे के ब्लूमन फेल्ट वैक में, और ओतौवा ले के जा है फिर यूर ब्लूमस्ट्राट में। तो हुआ पे एक दरी है जहाँ पे ओतो के मतलब कि फेल जरे हैं, जहाँ पे फेल जरे हैं, तो हुआ पे कर ओतौवा बुध गए। अब ओतौवा बुध गए तो ये रमिया ना के बैल वल करे कोई के भैया कि आओ हमें यहाँ काबुल है, ओतौवा स्लीप कर ये रमिया ओतौवा डमुए पे छोड़ दी से, वो तो हुआ डमुए छोड़ दी से गा फेल स्टोर प्लाट लगे तो हुआ छोड़ दी से भाई। और वो तो हुआ छोड़ के ये रमिया पैदल चल गए है, और जब लौट के आयल है तो देखे है गा बैडस दार बेस्टोन दुई लिंकर बांधन और पे बोले परकेर कलरा दुई बांधती त्रोतवार पे दुई बांधती रेबान पे। और लौट के आल तो देखे वो तो है ये ना है बहर दर लीफ वेर फोल्कस नार हैस में द बदूले और फोल्कन द ओक्तन दिस रात भर वो तो हुआ हुआ छोड़त। और उतना महंगा वो तो 20-25 हजार अमेरिकन डॉलर को हमदार लांटी के ना है ओकर एकर तसाई गोदी में लेके जा तू अपन ओतौवा शायद गोधी में लेके जा मार लांटी के ओतो न है तो चलो तो वह डमुए पे छोड़ दी बिहान भरे हम घूमत घामत एगो बतरे लेके जाबे। ते भैया हिया बतावे हैं जे इस बिहान भर दोंदर दाख के जे गए ले तो देखे पिकअप्स पोरलो से चोरी हुई गए भैया लांटी के ओतो।
लांटी के ओ तो चोरी होई गए भैया, अब एक बारे में सिपाही खोजबीन करे है तो हुआ लांटी के चीज जितना है बोले विनती वाई लांटी पाई। तो लांटी के चीज हुआ पे सबन देखभाल ना करे तो ईसूसु दे मैक भैया तो ये तख तख तो ये सी तक तख तख खेरार फिक्टोर पिकअप डाम पे रमिया छोड़ दे रहा ब्लूमन फेल्ट वेख में वो तो बिगड़ गया रहा दे रहा बनवावे के गए लो कर बात में गो फर्नेस बाक लगे फर्नेस अने बेल्ट लगे वो तो हुआ बुद्ध गए रात भर छोड़ दे इसे बिहान भर गए वो तो चोरी हो गए। तो ऐसे अनमें लंटी के चीज से चले जाकर तो पसीना से गार के पसीना गार के जब 25-30 हजार डाला वो तो किनते ना तो डमुआ पे कभी ना छोड़ते पलवार के बेल करते स्लीप वाखन के बेल करते बोले ओतुआ हम घींच के फिर ले जाई का बोले है धर दे का बोलेगा मोंतियर लगे नहीं कहीं फैल जगह पे दिस सॉर्ट थिंग इज क्राइक अवे इन सूरीनाम में से। तो ये बात है। तो आज हमारा फेसबुक में कितने लोग आ गया है जिसको नाम बताना मुझे जरूर चाहिए। और यहाँ पे दिखाए गए भैया राज राम लगन आ गया है ऊपर से देखिए भाई कौन कौन उर्शिला भग्गू पंडित तिलकधारी व्यक्ति के आपको स्वागत करते हैं दीदिया धर्मेंद्र इसरी नीदलांत उर्शिला भग्गू राज राम लगन भी आ गया है आपको भी स्वागत करते हैं। चित्रा अवतार सूरीनाम से आ गया है और पंडित अनुरोध गंगाराम पंडित भी आ गया हमारा प्रोग्राम में। और देखा जाए तो और आई फतिंगन आ गया अरे टोनिया आई गे टोनी टोनी आपको भी हम स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम में। और लोग यहाँ पे हैं लेकिन शायद किसी को नाम हम अभी ना बता पाया तो माफी की तलकदार है। अबे आप लोग को और हम बताएंगे क्या हुआ है। और जबरदस्त नीर भैया श्री नाम के हालत है बहुत गड़बड़ है बहुत बोट चले है डमुआ पे सब बोट चलावे ना कुरियारा बोट भैया ऊ का बोले मऊतर बोट चलावे है तो नहीं हाँ मऊतर बोट चलावे भैया चारों बगल बुड़ल है देश एकदम बुड़ गए इकोनॉमी बुड़ गए चोरी हिया से एकदम टोक्यो तक है लांटी कुछ करे ना है वात्रा पोंपू गयाना से लेनी आज हमारे देश सूरीनाम में देखो का भइल है। इरमा राम तहल सिंह देखो का हुए अबे आपको हम फोड़ फोड़ बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। द इकोनॉमी फन है इस हेला माल एकदम चपड़ाई गए भैया ऊपर ड्राइव न करेला इकोनॉमी फाने लांत इस हेला माल हिंदुस्तानी में बोले चपड़ाई गए है। तो एक बारे में और जो बोले फोर्थ सेक्टर फन फरी नकिंग फन इकोनॉमी है श्री नाम के जेकर नाम बा फेस ते को भैया का नाम बा स्टीफन देवी प्रसाद वो बोले हैगा कि ये रखे रेंगवा जो नबा का बोले है सिमोंस के और ग्रेगरी रेसलान के और झुआ भर के आदमी खुरपुआ मा केकर नाम ले भैया फतिंगन केकर नाम ले तो बैप बा भैया आ बॉप है फे यहाँ यानी कि एनपीएस है एनडीपे तो बास है और जितना सब के बिटोड़ के ले रहा सिमोन और फे यहाँ पे एक कंटी कर ले तो सब कोई के संगे काम करे और बुढ़ गए देसुआ भैया और बुढ़ गए देसुआ हाँ कुछ होवे ना है। तो हिया स्टीफन देवी प्रसाद का बोले है इकोनॉम के भैया फोर्स इतर है बोले है का इरे खरेंगवा जोन बा बोले इस फन मीनिंग दद रखेरे ऑन डांस ऑफिसर जो इंटरनेशनल फोंस बोली से आईएमएफ इस सब के जोन बोले कूट से चाहे चलावे के बोले ना चलावे है फोकस द इकोनॉम लाइक द सिचुएशन इन इट लास्ट मोमेंट इज स्टेबल मार वर्ड तकलीफ ते खत्म आन एन आंतल बलंगरेक सेकर हिडन। तो एकर बारे में स्टीफन भैया बहुत बहुत बात बोली से बोले है का सेल्फ लानबाउ सेक्टर जो नदमी हमार खेतियर है जे हम लोग के मरचवा खवावे है एरमा जे बाना खवावे है जोन अनमिया धान लगावे है यहां बताई गई है और के है हम लोग के हिंदुस्तानी है जोन आज खाई खुआ पे सुरगु करे है कि आवे है
u sub ken hier betaalde als voorbeeld noemde het ontbreken van de duidelijke agrobeleid om de landbouwsector verder te ontwikkelen. Verder noemde Debbie Persaat het jammer dat de uitvoering van de comptabiliteitswet is verschoven naar de laat. Behem de keri kabaat betaalde. Ja, niet keri me bhaire, boerana, dampe bhaia, terug hoa pe jaike. Op fasal hai, te moon narayan bhi aige, Bloemenveld weg ke. Aur Bloemenveld weg ke bhi bataye hoa pare, ego pick-up chori bhail hai lanti ke. To moon narayan, to hoa pare ek mila chhod de raha. Ab dekho bauta ka vrat ya ka bole, ab dekho kaun chakallas bhail hai. Ik to bouters ke aurat mevrouw Waldering jo nahi kabhi muh na khole bhaiya kabhi rakere ke baad kuch bolbe na kare hain jon samay pe podium pe raha tab bole raha bole me want te ka kondre yan baka bole hamare desh tul lautad bole phir hum angla leve ab deswa ja payge bhaiya to kuch na de yana me baith ke kha hai baith ke film pe dikhave social media pe मंदरी से पीछे बैठ के एक भाव खाए और आगे फरखाद रिंग लगल है और जैसे कि भैया हुआं कैंटीन ना है पौसन है तू हार्ड वर्कर बाटे कि तुके काबले समय ना जाए खाए को देश के बारे में तो एकदम भिड़ल बाटे तो ये हैगा अब एनडीपी के पार्लियामेंटरी इंग्रिड बाउटर्स वाल्डरिंग का बोले दोंदडक के नेशनल असेंबली में बोले है एगो हिंदुस्तानी भैया ड्रीम फाइव तक यार के है ये रमिया भरी बदमाशी करी से बेच फिर रहा तो नहीं बेस चफेर रहा भैया अब बेमहरिया लड़कन के अंतस्त करत रहा छुई मुई करत रहा भैया बस कोनो लड़कन फिल्म बनाई के बस पटा दी से के पकड़ के बंद करी से तो अब एकर बारे वेल अब इंग्रीड बहुत से बोले बोले कि अब चाहे बेस में लड़कन जहां बोले को बफाई लखेंग जाए के तरी सोचो भाई यहां बतावे है Ogo 53 jaar ke buschauffeur ke pakri se natuurlijk die verwacht wordt van het bestaster van schoolkinderen die hij van naar school vervoerde chauffeur waak bole hai aur bole hai ga ab chahenga us sabke bafailak kare ke bole kisne se film filial gegaan waarmee buschauffeur onze kinderen met beperking ek to bemaria ladkan hai een beperking hai deze kinderen kunnen vaak niet voor zichzelf opkomen chauffeur met een begeleider te sturen bole ko begeleider chahiye jai ke Aur voor de rest, khali wahi ke baare mein boli se, waarvan we natuurlijk verwacht jab tu regering mein baate, te ghar ke, apan ghar ke, na, ab chahi hum tari Rotterdam waan mein bhaiya, stapal ke stapal paisa milal hai. Naya news se nani, एक फैल साग भर के पैसा एरो मिलल है भाई एरो मिलल है ऐसन तैसन थोरो है एरो मिलल भैया अब कहां मिलल है एगो सुरिनाम से रेस्टोरेंट में मिलल भैया एक साका पैसा मिलल है और एकर बारे में दुई परानी के सिपाही पकड़ी से दुई मिला पकड़ान है और दुई आदमी पकड़ाने को इन फेफ तक यार का आदमी होकर औरत है दुई फिर तक यार के नमुआ बे ना लिखल है ये नमुआ आई ना चलो जानो जोनी के तो भड़ाके से तो हम बोला अबे नमुआ ना है कि चिनुआ है कि हिंदुस्तानी है कि कपड़े भैया केकर है रेस्टोरेंट ऐसा ही सबको चलावे रेस्टोरेंट तो यहां बताए गए है दुई प्राणी के पकड़ी से और ये पैसवन कैसे में कौन पैसा रहा बोले ये पैसवन रहा धोवत रहा भैया जैसे हड़िया बर्तन धोवा है रेस्टोरेंट में जाने गिलास धोवा हड़िया बर्तन धोवा तू तो ये सब पैसा धोवत रहा भाई पैसा धोवत रहा बाकी लेतल लगना वेतवा से हिंदुस्तानी ना नीदरलैंड्स में बोले इसे पैसों वेतवा से करत रहा और बोले क्रिमिनल वेतवा ऑर्गेनाइजेशन से रहा नीखन तीन मई के इस सब के पकड़ी से नीदरलैंड की सिपाही पकड़ी से और बोले हैगा शुल्क ते हमर खमाक फन वेतवासन यहां पे बताई गई है हमारी जनता और बोले कौन तांत खेल रहा फरमुडल के को तास रहा फन द श्री
Surinaamse toko zijn meegeven. Bolle om niet op te vallen. Surinaam kego tas mena. Je zegt ik goed kunnen sauda pani om maar daar al he. Bolle bij een doorzoeking in de keuken van een restaurant werd een gat op parse. Ego paisa gine wal machine bij om milte etana paisa ha. Ki machine gine ta bhaiya. 1, 2, 3 se nagin paie tra jara paisa ra. To uiteindelijk bhaiya een heet van landelijke opsporing die is. Ik doe je waar aan ik heb pakken is. Totaal ego laptop middel he. Aar paiswa ketra raha. Ongeveer 13.000 euro contant geld in beslag genomen. Op 21 mei volgde nog een aanvullende doorzoeking bij een reisbureau in Amsterdam. Daar werd ruim 12.000 euro contant middel. Administratie en telefoon is in beslag, dus ik ga reisbureau mee. Wie middel 12.000 Amerikaan dollar? Maar ja, een aanvloek ik maar betaal. Als ik al je vakantie zie. Reisbureau loon bhi kontan paisa na lewe usap ke chahi registreer kareke nahi koka ke paisa se armi pura dunia be ghumi ta uhik mare asaid hiya Nederland ke reisbureaus joon hai kontan de paisa na lewe hai ma 12,000 wa ekar kahan se aila bhaiya kahan se aila ab iya Amsterdam ke go reisbureau me aur ee chij milal hai bhai ab socho reisbureau idhar wetwas karat ra ka baki hua restaurant wa to seeker to Rajesh Ramdad bhi aa gaya hai to Rajesh aapko hum apni program mein bahut pyar se aur dil se swagat karta hai भैया एक आदमी अपन घरे तू जाने सुरीनाम देश में सब कोई अपन अपन घरे अपन ओतो धरे के खराशे बनाए रहे हैं कि हम अपन ओतो जाई फैल से अपन खराशे में धर देवे ना वो लांटी के कम करतवा जो लांटी के पिकअप जाई के ब्लूमन फेल्ट वे के डाम पे रात भर छोड़ दे रहा कि ओतो चोरी हुई अपन गाड़ी आदमी लोन सुरीनाम में बोले नामी ट्वेडा फ्राउ जाने नाराज ऐसे बोले ना बोले हमार फरफूर हमार ट्वेडा फ्राउ है ओके सबन भैया सब कुछ मांगा है धोई ओई के चमकाई चमकाई धरे है तो ऐसे भैया के खराचे एगो रहा सुरीनाम में अचित्ते में भैया अपन खराचा अचित्ते में भैया लुटेड़ा गईल है और कटली से लेके भैया ऊपर से एगो ईटा कपड़ा में बांध के और गईल है अनमिया के मुड़ी पे मारी से अनमिया गिर गए भाई अपन ही खराचे में और पैदल गईला भैया बातचीत हुए एलेंडस्ट्रात में एलेंडर स्ट्राट में भैया एलेंडर हुई कि ना ये एटफ्लिक की सिपाही कर बारे में गई ले यार मिया कौन चीज केती पहन ले रहा भैया सोना के केती पहन ले रहा अख्तन फेव तक यार खमान मंगर के और ये बात हुए है सहती हुए श्रीराम में और चोर पैदर ईंटा से गए लेकर रूफ कर ले भैया ये हु चीज हमारा देश में श्रीराम में भी हो रहा है बहुत अफसोस की बात है और हमारा जो यानी कि मिनिस्टर है हनीस यानी कि मनोरथ जो है बोले है क्रिमिनल वन साका हुए अबे बताब के तरह साका हुए है अबे बताब के तरह साका हुए भैया कुछ साका फाका ना हुए है बहुत ज्यादा हुए है तो यहाँ पे तुलो जानो भैया जोंस के एनडीपी के तो हाँ एनडीपी के पार्लियामेंट पार्लियामेंटारी एबी जोस बोले हैं बोले संतोखी बोले एगो टूटा पुराना बोले ब्रांतवेर के ओतो किने रा सेफत तक दैचन अमेरिकन डॉलर बोले देख ले हम लोग कितना विशाल बाटी बोले हम लोग तो 35,000 डॉलर में किरीला बोले देखे बोले देखे संतोखी का कर ले रहा उबरिसिया तब की बोले 70,000 सेफन तक दैसन डॉलर में बोले किने रहा अपर इखेर प्रयोग पे बोले एगो बेस फॉर द ब्रांतवेर एगो बेस किने रहा तेरवार द फांसी बोले हम वही आला इसने वाल किली बाटी फेफन देख ले हम कितना भी साल बाटी देख ले कितना मोइसे देसवा जादे मी एक के खूब गरियाई से ए बी यूज के बोले काम कर
बोले इसे बकवास तू ना कर। तो यहाँ बताई गई है गा बोले है ऐसे वेदरों दैलक है तीर ऊपर फंदा रखी रिंग। तो उस समय पे तू भी रखी रिंग मेरे ले भैया देना में कहे नु चीवा पूछ ले रे ले फॉल्कस जोन्स वारन दिस ऑटो नीट रेक स्ट्रिक्स बाय एन ऑटो इंपोर्टर को मार गोन अपकोक बाय पर्सन इन Suriname die deze race in gebruik hadden. Ze zijn verzameld geworden en verkocht aan de overheid. Alsof ze afkomstig waren in, van de automarkt. De EB Jones bolle. Ik er waren mee. De John bolle. Bhaiya hamme to bata dekho. Gaya dinwaka bolle. Gaya dinwaars. Kyukar is er geen enke. Voor gevaarlijk signaal bij de wijziging van de comptabiliteit. Wet bhaiya ha. Ab dekho erwa ha. Be bata be ketra hai kursawa. तो एक बारे में बड़ी लंबा चौड़ा बोली से गया दिन हिस्टोरी कैसे फन Suriname फॉलक सेव खनु फन अस्टेल क्रिटिक ऑफ स्पोनिश कंपालिटेटन वेद IMF आस्क्यूड यूज टेकन रोलबाग Olie en komsten van deze sterke instituut. Oude bolle Irak en Engwa. Boeke koppelening. Hij en ik kijk ze de zwa. Sudhari ga bhaiya. Kijk ze sudhari. Te jehu batia. Aap loek ko hem. Bata hi de la be. Misi kaba sunio ka kare bhaiya. Misi kaba ke. Baant loek ko hem. Jarur batayenge. Ki misi kaba ke kahani kya hai. और क्या नहीं है हम जाए वाटर ओवरलास के बारे में भैया Suriname में मिनिस्टर है क्यूरी एगो मिनिस्टर क्यूरी है बोले वाटर ओवरलास ए लेरारन तो कोर सेटन अंडरवेज सेक्टर अंडर ड्रग और बोले ये फ्राउ मिनिस्टर बोले बहुत कमती है बरखा बहुत बरसे है लड़का नामों इसे पढ़े है अंडरवेज सेक्टर बोले अख्तरजा है बहुत अख्तरजा है Volgens de bewindsman heeft het ministerie de afgelopen periode klachten ontvangen van schoolleiders.

टूरिस्ट मांगे सुरीनाम ढेर जेस। हाँ तो मेरे ख्याल से और यहाँ पे बताई गई है टूरिस्ट सुरीनाम में बहुत मांगे बिगी पान तो सब कोई बहना गयल है गयाना निकेरी में तू। हाँ बिगी पान बहुत आदमी गयल है निकेरी से बोट लेके जइयो बहुत अच्छा लगे भैया हम भी गयली है घूम गयली अगर आप ना गयल हुई तो जइयो बिगी पान। तो सुंदर हीरा लुंडा के नाच आपको हम स्वागत करते हैं उस्तादों के उस्ताद भैया सुंदर हीरा भी आकर हमारा प्रोग्राम में भाग ले लिया है आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं। तो यहाँ बताए गए कौन से बताए गए हैगा प्रेसिडेंशियल वैरखरूप एगो हैगा जो टूरिस्ट ऑन्टवेकल करे हैगा बुधवार के निकेरी में बोली से स्टेक होल्डर्स कंसल्टेंसी के कि हम लोग के जो टूरिस्ट सेक्टर हैगा का बोले हैगा बिगी पान के निकेरी में कोरोनी में क्या ही उस सबके फर बेहतर करे के दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा लिखल है लेकिन आप लोग को हम छोटे में बताइला कारण कि न्यूज काफी है दोस्तों और जो न्यूज ये काफी है तो आपको हम जरूर बलंग रहेगा न्यूज तो और बताएंगे न्यूज तो सब बलंग रहेक होता है लेकिन और तुलन जानो भैया निकेरिये में हम अब्बे बाटी भैया सुंदर। हाँ अब्बे निकेरियम बाटी तुलन जानो है एगो आदमी सिपाही हुई के और एगो आदमी के दाग दे रहा घर द्वार के बारे में कुछ दिन हुए भैया आप लोग को हम बताए रही एकर बारे में। तो ई अदमिया सिपाही रहा और हीर कर ले रहा एगो घर हुआ वहां पर दोस्तों और यहाँ पे एक मेरा घर हीर कर ले रहा ई सिपाहिया न मांगत रहा निकले घर वहां में से। तो उस अदमियन चिराग पानी एक नरवा घरवा के बंद कर दे रहा अपार्टमेंटवा के तो इस सब के निकरे पर गए तो ई अदमिया का करिस एक रोज गईल है हीर दरवा और देखेगा एक नरवा हुआ घरवा में बेशक है और जो देखे बेशक है बस निकारिस अपन पिस्तौल और दाग के अदमिया खुआ मार ढारिस और इसको तू रहा भाई नौकर भाई ये रमिया स्कोतू रहा स्कोतुआ अपन दिन स्वापन से दागी से एक वा रमिया के यानी के और वो मर गए भैया। अब एकर बारे में के सजा मिलल भैया ना एक ना दुई ना तीन 20 बरिस के सजा पाई से एके बोले तू सिपाही होई के और तू इतना बड़का चीज गेले ऊपर से तू गेले बाटे लांटी के पिस्तौल से मोर्त करे बोले तू मोर्द नार बाटे बोले तू मोर्त कर ले बाटे और ऊपर से रमिया के या खवेर खवेर जितना रहा सब बसलाख कर ली से दोस्तों सब बसलाख हो ये है। एकर बारे में आप लोग को हम बताई है और यहाँ पे नाम भी है भैया नाम भी है पुलिसी अमतनरवा के नाम रहा अफजल और जो अंदर नहीं मरवा रहा उद्रियन दर तक यार के भैया आकाश जगरूप रहा इन इदे सिंगा वेख निकेरी में इत सिंगा वेख निकेरी के बात है और 14 तारीख अक्टूबर में 2025 में झगड़ा भैला और एक दागी से भैया यहाँ पे बताए गए हैं शायद आप लोग को याद हुई एकर बारे में हम आप लोग को बता ही रहे और यहाँ पर अब जाए के उस सजा पाई से 20 बरिस के हिंदुस्तानी है दूसर भैया अफसल दागी से आकाश जगरूप के दागी से हमारे प्यारे प्यारे जनता हम जाई है मीसी काबा के ओर। हाँ तो मीसी काबा कहाँ करी से भैया मीसी काबा बोले है बेस्ट मैन तो लातों से मिलियो कौन हौदन मिलियो तो सब बुड़ल है डाम ओम सब बुड़ल है और अंदरे मीसी काबा बोले चलो पानी उलचो। हाँ तब तो तुझ कौन हौद कर पाइये पनियाम कौन चीज कौन हौद करिए तब बोले यू लेक बिरखर सा तान तप आजारी बोले फॉलोस का सौ है सामलीफन और बतावे है बोले सो आज द बाइगोन एंड बॉब स्पाइट बिसन द डेल आइट मार्कर फन हंस एल्क है सौदिंग फॉर द दोदर फन मस्कीटन काकर लाकर बोले उस सब चीज अपन घर में बोले धल्ले रहिए कि तुर घर में मस्कीटा स्कीटा आई तब बोले स्पोइटी कर पाइए मैं भैया लोग के पैसा हो जाओ एगो बाइगोन कीनो तो पता चली कि कितना मांगा है कितना मांगा रे लंटी दे आदमी इनके तो
कि अपने से तुम बस स्ट्राइड करो, बांटो जनता के।

0: कि खाली जइयो पकेट वो देखियो कि देखम तो कहली पकेट दिखावे हमें स्टैम करियो। अब आदमी के नौ थे घर में भैया, मस्कीटा काटे, चिकनगुनिया काटे हैं, डेंगे काटे हैं और कितना कितना चीज काटे। आदमी इतना बीमार पड़े है, चल टट्टा है, सगरो बुड़ल है, मूस सब घर में घुस घुस जा है। तो के चाहेंगा लांटी के चाहे जनता लोग के बाइगोन देवे के तुल अपरे मारो। ओग बहन आन मा कफन मिस्कितन कारसन को मेरे खिस्ट ऑफ फ्रे दी आल फोर बिल्डर वर्ड ऑफ आन खमेर फन खिस्ट ऑफ बाकी बिका है चीजवा मस्कीटा के गो कार्स बिका है मतलब कि विरोग बोले ओमा बोले हेगा खिस्ट ऑफ है मजे तू जाने चीजवा खिस्ट ऑफ द वार ओम खाई ली ये बेट इन द रिकरिंग फॉर गुनिंग के फॉर्म दी दिंग तक कम ते इंपोर्टेरा। तो ये बात है भैया, तो तुझे ये का बोले दिखावे दुनिया के हम कितना सोरख माकर करेला तो लोग के कि वीरो को ना बरियो वत ओमा बीमारी है। तो ये बात बताएगी। अब देखो यहाँ पे बोले हैगा मोडसू पानी भैया स्ट्रोम पोने एगो 80 बरिश के औरत है ताकतक यारख औरत के घर में पानी घुस गया और ना ऐसन तैसन पानी रियो लेरिंग के पानी टॉयलेट के पानी मलिच पानी गंधान पानी ई बुढ़िया माई के घर में घुस गया भैया सही फूरते बोले है दात ओक अन्ना ना देल के इफेक्ट इन इरफान फान ओवर तलख वाटर बखन तो स्पिटरन तो मिदन इन द अंडर लोपन स्ट्रांड डाम सब बुड़ल है रियो लेरिंग सब बुड़ल है और ये औरत के घर में पानी घुस गए हैं। ई मैया कैसे खाई पी कहां जाई बोले हैगा यहां पे स्कूल केंद्र लोपन दो रही ये सवातर हुई पानी में डप डप जा भैया वही में मूस दौरे वही में सांप दौरे वही में एक से एक मलिश चीज और सूरीनाम देश में है हमारे जनता। तो हम सोचे आप लोग को हम एक गीत सुनाई दे। तो गीत के बाद में तो अभी हम आ जाएंगे देखो भैया संदीप बदलू आप लोग को क्या सुनाते हैं।
1: पावन करे

और दिल मेरा क्या टकराया, देन हाँख वाली रहा कि लंदन वाली रहा, मेरे ख्याल से लंदन वाली से, लेकिन देन हाँख में भी दिल भी लोग के टकरा जाता है, आपको तो जरूर मालूम होगा। और दिल कैसे टकराता भैया, जब बॉक्स हुई है तब में ना टकराएगा। तो हेमंत बदलू भी हमारा प्रोग्राम में आकर जुड़ गए हैं। हेमंत जी आपको हम बुद्धू, हेमंत बुद्धू, सॉरी भैया बदलू बोल दिया, हेमंत बुद्धू है। तो भाई यहाँ पर बातचीत हो रहा है भैया हीरा ना, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है भाई श्री नाम है, जहाँ जइयो फकांसी से तो तू जानो बहुत ढेर अपार्टमेंट इधर उधर तरी छान बिन कर ली हो, कौन में लोहा लगल है कि ना लगल है, जंगल अंगल वाला फर्श में ना लिए लिए, जहां तरी अदमी अदमी रहे है, इधर उधर कोना ओना वाला ना लिए, जहां तरी फैलक है, और कौन बीड़ में भी बाटे भैया, लतूर फतूर के बीड़ में ना जाइए, ले वे सफा बात बोली ला, लिहो तरी जहां परे तरी फैलक फुल करियो, रोफुआ कॉम्प्लेक्सोन में बहुत जबड़ होवे है नाना। तो यहां बताई गई है बितरे दिहात में ले लियो है ना भैया हेमंत बुद्धू, दिहात में ले लो, क्वाटा में ले लो, उस सब जगह ले लो जहां पे तरी अच्छा अच्छा आदमी रहे भाई, तो लो जानो हम का बदूल करी तो। तो यहाँ पे देखो एक अपार्टमेंट रहा, अपैतृक कॉम्प्लेक्स रहा, वहां पर बताई गई है ये बात होगी प्लानिज स्ट्रात में, श्री नाम हुआ पे दुई बोनस के भैया दुई मिला जो हुआ रहत राम, बड़ा पैसा सबन मार दी इसरे फ्लिंक फिना चेल स्कादो बरसोरक ओक अरबाइमेंट से, और बोले द दादस जो डाकू जो रहा उस सब पैसा वार्द फल खुदरन सब ले के भग्य है, यहां बताए गए है इस्त बना दी दे लगे 25,000 एसर दी 50 डाला रे बवेस, और एक वाले के 70,000 एसर दी कपड़ा तह चुरा ले से भैया, क्लीडन स्टोकन जो पहरे और अमिया नंगे ना रही है प्यार, ऊपर से ताश 15,000 एसर दी के मोबाइल टेलीफोन भैया बड़ा बचाई के रहिए, का बोली हम का बोली हम, हिम्मत ना परे बोले के मैं बताना हमारा काम है, बोलिए जोनी का हुए चीजवा, और हमार हनीस मनोरथ का बोले है, बोले बाप रे बाप, बोले क्रिमिनाली तैतुआ, बोले हम साका कर देली, का सोचले बाटे, बोले हम साका कर देली सैफर्स में हाँ। और देखो यहाँ भैया मीसी कब्बा का बोले बेटा सा नहीं आपको स्वागत करते हैं, राजा अयोध्या गया भी क्रोनिंगन से, राजा जी कहाँ के रानी है उसको भी हम स्वागत करते हैं, मीसी काबा का बोले है मिनिस्टर फॉन फॉलोस कसोंत हेट के सुरीनाम के बोले है फर प्ले कुन दखन ओम साइलन दैसन अमेरिकन डाला कोस्टन एन खान तो खवोन वे, बोले है तब्बो शिस्तर इस्तर जो सरनाम के है, बोले सब भागे है भैया, बोले देशवा छोड़ के भागे है, बोले हम लोग के शिस्तर ना रही गे है, बोले हम लोग कहानी कौन देश से मंगावे के 1400-1500 डाला भरब, अब देखिए बतावे हैगा न मातरी खलन अबे तुझे यो सिकन है इसमें, और का बोले अकादमी सिकन है इसमें दपन चद्दर बिछौना लेके जाए के परे बेटा सन है, अब जब बीमार पड़िए ते को अपन घर से सिस्टर भी ले जाए, एक परिसाइड भैया वह सब सिस्टर चल गए है, और ना जानियो स्पोईती मारे भाई तब चीजवा कैसे होई कौन चकल्लस होई, तब यहाँ बताए गए है कि बोलेगा एक कानी शेख दत्त में दी बता ले खून ओम सेल मैन कोम सेल्फ हेलमान नीतन मिनिस्टरी वन एर से इन्फ्लिक्ट आई से दन खुरुत से ऑन्स फन आई तेर फ्लिक्ट है मैन ही द ओम सेल एने के बखरीपन दन ऑर्गेनाइजेशन इरोपा एन मनी ढेबर का फोन दन सो दस दत्त नीत मेर कन मेर नो दक हेबन जो जेक मुझ शेख दत्त में से खून वेख खान से मिशिकावा वूर्स दा। तो दोस्तों हम इंटरनेट पे पढ़ ली है
कि कितना आदमी जो दुनिया भर के कराइबी खबित के जो मांगे बैठा लंच जाए तो एस्ट प्लास पेगा हाइटियान भैया हाइटियान जो न पर देश छोड़ के जाई मांगे हैं। दूसरा प्लास पे हैगा जमैकान दर्दा प्लास पे जाने के हैं हम लोग के देश रिनाम जो उतरा ढेर आदमी देशवा छोड़ के और मांगे भगे भैया हमें ही आ रहा तो हम आज मेरे ख्याल से हम उसको फेंक दिया है लेकिन अबे हमें याद है कि कितना लोग है जो देश छोड़ के और भागे मांगे भैया और जब भागे मांगे हैं तो ओमा जरूर हाँ देखो हमें मिल गया है। यहाँ बताए गए हैं हाइटी हाइटियान फीरन सेफन तक इसको मैं 6% मांगे हाइटियान अपन देश छोड़ के भागे जमैका के आदमी मांगे है का फिर 5.3% देश छोड़ के भागे और यहाँ बतावे सरनाम के आदमी मांगे हैं 5.0% जो कांस पाई देशवा छोड़ के भाग जाए भैया। यहाँ पर बताई गई है देखो भैया यहाँ पर बताई गई है कि कितना आदमी और यानी कि मांगे देश छोड़ के भागे फिर द प्लास पे पेरू फिर द प्लास में डोमिनिकन से रिपब्लिक ऐसे जे एक बार तो बोलोविया होंडुरास कनाडा एल साल्वाडोर कोलंबिया त्रिनिदाद लेकिन हम लोग दर्द प्लास पे बाटी भैया जो सन्नाम छोड़ के भागे मांगे हैं आदमी लोन जो अगर तुम्हार देश हम लोग के देश आज बढ़िया रहता कौन भागत भैया सिस्टर दतरा सब छोड़ के भागे हैं लक्षिकन है इसमें बिना सिस्टर के आदमी कैसे काम करी एक बारे में यहाँ पे मिसी काबा बोले है मिसी काबा स्टिल दैट हैव फन ऑफ सेन अनट्रेडन देश मात्र एक नीट हीव अनखरा एंड दस नॉक सेज फन क्राफ्टी और बताई गई हैगा अन दस दरखेरिंग संतों की ब्रेस में बसलों तो जैसे फीरन तो इंतक आइटेंडलेक देर पर्त्रेख एनक सेंस ते बमुइलकन दौर द कोस्टर फन वार में मतलब की प्लोमास एंड आनफ्रागन फन एन बफुक्सेड फरक्लारिंग फॉर फर्त्रेकन्दे सॉर्ट पेस्ट्री ते फरहोगन ना 250 नार 1000 अमेरिकन्स डॉलर बाकी तब्बो आदमी ओम सेल करके और भाग जा भैया तो सिस्टर फॉर प्लीकिंग जो है तो वो देश छोड़ छोड़ भागे है और ना खाली वो भैया जब मौका पाई तो यही देखिए बोले बेतरे में गो से तुम्हारी भी ना खाली नहीं जलान भैया क्यूरासो भी आदमी जा है अमेरिका जा है बेल्खिए जा है और देश सब जा है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो ऐसे जरिए कि अब देखो भाई ये जानो हम जाए तेरी त्रम्पुआ कलती हाँ अमेरिका के तेरे बड़ी बदमाशी करे त्रम्पुआ चलो जानो है तो हाँ नो मैं खराब आगा माना थी तेरे खिलवाड़ ना करे भाई मारी से हुआ काबले इसराइल में सब झाड़ फाड़ के धर दी था प्रो पलान हुआ कस के हर मुझके तेल के जितना आया सब को इस पर पूरा दुनिया आज पलान है और मतलब भैया तेल के प्राइस हम लोग के इतना चढ़ गएगा खास के प्राइस चढ़ गएगा इकोनॉमी दुनिया भर के हिल गए है तेल से तुम देखो काका करे उधर गाय के शीना में गए लेगा चिन्हुआ से बतिया है अब देख काकर से अब बड़का बोटिया पठा दे इसे कराई बीस में भैया और लोग बोटिया अपन पठा इसे हारे नानी पठा दे इसे और का बोले मिली तेरा फ्लिक डेक्स केपन तेर वीरल ओ का नाम बा यूएसएस निमेट्स बता दे इसे भैया और वो जहाज आएंगे कराइबी खबीत में बोले हैगा कॉकटेल पार्टी ऑफ द इन इमेंस स्किप बोए वो ने अब ए नोडे के फन कमांडर और वो आएंगे बोटिया और बतावे द खास्टन वेदर फॉर मॉर्गन अब खाल में सी टू फ्लिक्टर तो हुआ के फ्लिक अन सूर्याती भी बोला इसे कि चलो ऊपर और वो चीज क्यूबा के बारे में है दोस्तों और तू जाने हैगा क्यूबा इज ऑफ एट कोरल चेंजमेंट और त्रिम बोले बोले उन्ना बोले कि अनफाल करी क्यूबा के मैं क्यूबा मुन फोर सेक्टमेंट से तो जाने जहां जहां तेलवा बा हुआ हुआ जैसे जैसे चूटी शुक्रू देख के घस के धीरे धीरे ऐसे ऐसे त्रिम चारों बगल अपन आंखी फटाए बा भैया हमें डर है हमारा देश रे नाम में तुम तक में जब तेलवा निकलेगा
तो का होई भैया तुलो जानो फेडी स्वेला के संगे का करी से तुरंब तुम तुरंब का करी सेगा और काबल मदूरा के पकड़ के अब तक बन्न करी से भैया और हम और आगे जाए अपना प्रोग्राम लेके एक सिपाही भैया दर्द क्लास के तीन स्ट्रेपी के हम न जाने सब ट्रेन करी से कि ना करी से गा नाना अपन पिस्तौल से भैया अपने ही के दाग ले से पर ओंखोले अरे कैसे सफा करे ये क्लीन तो कोर्सेस तू स्कूल जाए तू पढ़े है तो के ट्रेनिंग है और तू दर्द क्लास की सिपाही बाटे ना पहला नहीं पिस्तौल वो अपन हाथों में पकड़ ले अपन गड़वे में दाग ले भाई दागे के चाहिए चोर के डाकू के चाहे डागे के चोर के चाहे डाके अपरे अपन गोड़वे में डाक के हो जाएगा अकादमी सिकन है इसमें सूतल है पहलाई के belachelijk mensen, een ongelukje kan overal gebeuren. Maar dan moet je toch extra voorzichtig zijn. Volgende voorlopige informatie ging het vuistvuurwapen onverwacht af tijdens handeling met het dienstwapen. Hoe het incident precies heeft plaatsgevonden, doet horen wat hij gaat. Kill het, kalle trouwe, bhaiya. Aur dagge apan goor chotwale ise. To ye baat hai. हमारे जनता सरनाम के सिपाही के बाद बतियाएला हम ना कोई दूसर देश के सिपाही के हम बाद बतियाएला नाना अब हम जाई तरी स्टार न्यूज की ओर अब देखो तुलो जानो पॉल समाज हार जो के बैठा हुआ तो बरोंटो पाए बरोंटो भैया अरे कर ऊपर कितना रोज से साक चले है ओएम के बड़ा गाड़ी देवतरा भाई संतोखी के गरियावे फैया पे के गरियाव गरियावर गरियावर ब्रंस वही के गरियावे लगल है कि हमें तुलुम बचाओ बोले हमें चाहे जाए के ओएम फॉर द रेक्टर चाहे जाए के लग कोई ना बचाए पाए भैया सुमो हार जो के जाए के परल भैया यहाँ बतावे रे फॉर्मल का प्रेसिडेंट ही ऑफ गिवन फॉर अन ग्लैट अंडरसुक फिया फाइनेंशियन एर इज डोर ग्लैट गेसेग दैट एर टेलीफोनचे व्हाट वनुइट इट कैबिनेट फॉर प्रेसिडेंट फॉर अन पर्सोंसगेबोंडन अंडरसुक इज गवे अब देगा बोलेगा ग्लैट करे द पुलिसी एर ओएम अब ये भैया का बोलेगा अब जाएगा ऑन द सुक पे अन हेयर सेटिंग होई के बरोंतो के ओवर द फॉरदरिंग फॉर द पीजी फोर से ये के होर सेटिंग हुई गए है और होर सेटिंग फन फॉर्मल के मिनिस्टर जो रहा रियात नूर मोहम्मद के तुलन जानू है ओके भी जाए के होर सेटिंग हुई गए है ऑन द प्रिस्क्राइब निनाडो ओएम उपमार बहांदरिंग और मिनिस्टर बरोंटो के भी उस समय पे मिनिस्टर फन बेनलान से साका रहा सोमो हार्जो के और बताए गए हैगा यहाँ पे द ओएम ही फॉलो द अनलाइन खसीर फॉर फॉलोइंग मार हेट इज ऑन द नेशनल असेंबली ओम टू stemmen de verlenen voor verdere stappen. Assemblee je boli haan thik hai ga. To tulun jane formale minister je na financiële glimor hoofdraad. Hoofdraad to abbe tak miljoenen ne leike faraar hai. Je hom lok te des naas kari se. NDP ke raha bhaiya tulun jane minister a financiële ke bauter so ka baita raha. Abbe tak पैसा लेके भगल है और बताएगे पोस्टपर बैंक में तुलो जाने मलाइवा के तो हाँ मेरे फॉर थिंकिंग फॉर फ्रॉड एंड मिस ब्रेक फॉर बफुक थेन हुफ्तरात के 11 बरिस बोले एक्टर आल यारन फॉर फ्लुक्तक है फॉर वार्डोर से होर सिटिंग ऑन सीकर ब्लेव और नूर मोहम्मद वार्ड फरदाग om onregelmatigheden rond van Pan American Real Estate woningbouwproject voor lage inkomsten, waaronder vals en geschriften, een oplichting van la via. To abbe deko jo minister van LVV ra okar bare mein kaise van hai mut namlik ook voor de verhoor ga okar naam sabhan le raha tulun jano ekar bare mein to hamare janta कैसे चीजुआ है और कैसे ना है दिस होर सिटिंग जो रहा हो गई यहाँ पर बताई गई है रियात नूर मोहम्मद के 9 बजे रहा वो रहा और मिनिस्टर रहा ब्रोंटो सुमो हार्जो के 11 बजे रहा क्लीम और हुफ्तरा तो ना रहा बक्यों का सकवात 1 बजे चलल है और द होर सिटिंग फना नून मोहम्मद हुफ्तरा सेन बसलोतन तरवेल दी फना सुमो हार्जो ओपन बार इज ऑप्शन ए कन फॉर सूप
सो हर जो बोले बोले हमार तो खून ओपनबार करिए और ब्रंतो के यानी कि नूर मोहम्मद के और हुफदरात के बोले बस लोग तक करिए कि कोई ना सुने पावे कि हम लोग यहाँ कौन ची बतियाईला कितना चोरी कर ली है और कितना चोरी ना कर ली। ऑस्ट्रेलिया को और हम जाए भैया एगो टूरिस्ट जो रहा वहाँ पे भैया टूरिस्ट हुआ का करी से एगो जगह का नाम ओफर बरूम एगो जगह का नाम इंकापत इन पेरू पेरू के बाद एगो ऑस्ट्रेलिया के आदमी गए भैया लोकल ऑथर बोलेगा 300 मीटर ऊपर हेलिंग पे लंग्स स्टाइलिंग हेलन वो नीचे गिर गए 25 तक यार का ऑस्ट्रेलिया वास में सेन फ्रो पेरू में गए ला बुधवार के उस सब लाश हो गया रहा ना दाते सामन एगो खूब टूरिस्ट ले के गए ला वांडल करे माचू पिचू में और बोलेगा एगो पुराना रास्ता शहर के नाम बा रूनी स्टार फन इकाश यहाँ बताए गए वो मी गिर गए उतरा ऊपर से लोकल ऑथोरिटी ऑन सुकर द प्रसिद्ध दूत और सा अब तो 300 मीटर से गिरी है तो कहाँ तू बचिए भैया 300 मीटर यहाँ ना है तो ये बातचीत है हमार जनता। अब देखो लड़का भैया अपन औदस के क्लाक करी से डॉक्टर एगो बिटिया है अपने नीदरलैंड से एक बार वर्ड इरफान फरदाग हैं डॉक्टर आल्स मिंदर यारग यारन लंग ते हैवन uitgebuit het meisje maakte al vanaf jonge leeftijd lange werkdagen op markten in Nederland en België एगो छोटा लड़की छोटे पसे ओके चाहे बाजार में नीदरलैंड तो बेल्जियम में बेचे को कर बाप माई जो रहा ओके मिस ब्रेक करत रहे एकर बारे में भैया मिंदर यार यारन लंग ते हैवन uitgebuit ने मिस ब्रेक uitgebuit करत रहा भैया इन मेडल्स में दर यार का डॉक्टर दी सेल्फ अनकीप्ट थी खनार औदर दी वेर दर मंगलवार के ओके पकड़ के बंद करे से देन बॉस की सिपाही दिस ओके बोले हैगा फरप्लिक्त वर्क अरबेट अपन बिटिया से करवावत रहा इभाला कोनो कोनो कोनो बाप माई है हमारे जनता दिस ई सब चीज भी होवे है। अब देखो भैया यहाँ बताई गई है कोंगो हम लोग चली कपड़ी के देश वहाँ पे 750 आदमी के एम्बोला खफाला हुई है कोंगो में वहाँ पे बहुत जबर है बीमारी कोंगो उम्बो ना जाइए भैया कोंगो में बड़ी बीमारी है डेमोक्रेसी से रिपब्लिक कोंगो में और बोले सीफ ऑन फेक तक मैं से बस मैट भैलेगा और ओमा हों सीफ तक आदमी मर गए हैं बताई गई हैगा और ये एम्बोला बफेस्तक करी से बस मैथिंग हैगा। तो ये बात हम में जरूरी रहा आप लोग को बताने को यानी फकांसी आने वाला है कितने लोग यात्रा पे हो चुका है फकांसी प्रयोग है वहाँ जाओ खुमो से इन्फॉर्मेर कर लियो मिनिस्ट्री फन बैतलांस साका में वेबसाइट पे कर लियो कि हमें कहाँ माखे जाएके और कहाँ ऋषि को है और कहाँ ऋषि को ना है। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता। तो आप लोग के हम एक गीत सुनाए माला पति मोरे लागे रॉबी गोगार के एक गीत है

और यही गीत से हम अपना प्रोग्राम को अब ख़त्म करेंगे। एक दो समाचार आपको हम और सुनाते हैं और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। और आप लोग जानते हो नरेंद्र मोदी गैला भैया यानी कि ना नरेंद्र मोदी तुरंत गैला चिनुआ से भेंट के ओकर बाद में डायरेक्ट रोसलान के पुतेन भी गैले भैया चिनुआ में और पुतेन फर्स्टर कर मान देते से शीना ए रोसलान तेज से सेरेमोनी इन द बीइंग जगह का नाम श्रीस के जो प्रेसिडेंट है भैया यिंग पिंग जो नहीं का रोसलान से प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतेन से 20 गो कोची टेकन करी से उधर क्यूबा भैया बहुत जबर अमेरिका को ऊपर गुस्सान है फेल टेकन अमेरिकांसा आनक्लाक टेकन रुवेल कास्ट्रो के बारे में हमारे जनता Sterkersteking van de Gunuru. Zie, virus in Europa. Via seksuele overdragbare aandoening van zoals Gunuru en Sivrego Bemari. In Europa is de afgelopen 10 jaar sterk toegenomen. Aplonjano, Suriname, HIV. Chikungunya, Usep ze bachai kreio. En ja, Europa me. Soa en zo. Hier heb je behoudheer. Usep je aplon. Chaukas reina. Juta pahene me khelwaar na kario. Via juta na hoite jabar jabar. लार्ज पहली हो आप लोग तो यानी कि समझदार हैं तो आशा समझ भी आकर प्रोग्राम में जुट गए हैं। आखिरी में फेस क्लाक रुवेल कास्ट्रो फॉर ना नेर हाल फनिक तो इकने नीखती ससन नीखन तक में तो दोस्तों यहाँ तक था आज की समाचार। सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा तुम्हारा मुलाकात होगे जितने लोग हमारे फेसबुक पे बेटा सन ही और यानी आशा जी और रजेश राम दत्त सुंदर हीरा मुन्न राय अनुरोध गंगाराम पांडे चित्रा धर्मेन इसरी अर्शिला भग्गू टोनी इसरी और रांच राम लगन और छापा मियाँ देखिल भैया मालूम नहीं जे किसी को हम एरमा राम तहल हेमन बुद्धू जितने लोग हैं आप सबको यहाँ से हम क्षमा चाहते हैं। तो फॉल कर बाय बाय स्वाइस बाय।

अर्चना दुर्गनम बाबू मई तो लाई है कौची मजेदार लाए ही। और उस्तादो के उस्ताद हरीश बालक का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन की ओर। वो क्या गाते हैं।

और कठिन भिन्न छोरा। तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग जा, और रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

और पांती मोरा ले जान सुगनवा तू कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो। तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सुरिनाम के हम याद करते हैं और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसई डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।

औरो सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दूबे उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा के ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं। बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा की ओर।

और कन्हैया कन्हैया पुकारा करे देवी दीन गुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे सूरीनाम देश में, बहुत मशहूर गीत थे और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

als ze maar een goeie is. Dan gaat het om wie dan ook mensen. Tja he, jo bhi mile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kal ka zong dosto, koi zamana mein. Aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यौंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने जमाने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे। तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर, फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

भी नहीं, ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे, और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद, और वो है भिखारी। भिखारी सॉन्ग को गए थे, आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग। आज जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

मच्छी भी छेद लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं। और जो स्कॉर्पियन जब छेद लेंगे भैया, तब तो उसको दवा दारू कुछ और है, और जब बरैया छेदी उस तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर, और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बाद चीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

आँच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उजला दिल होता है।

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो। और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है।

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस

0: नौ एन टी मारे बेरी रियो फन हैप्पी ऑल टेट एन थ्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फॉर वन।

और दोस्तों हम सब चाहे हॉलैंड में हैं, चाहे जोन आई संदेश में हैं, लेकिन आप चाहे जहाँ जाइयो, जब अगर कोई और आपको देखेगा तो वो जान जाएगा, नहीं वो पूछेगा भाई आप कहाँ कहो, तो आप कहेंगे हम हॉलैंड की, तो बोले नहीं तो ये मैं अपन आंध्र क्लर्च, तब बोलियो ना ना ना हम सरेनामी हैं, तो हमारे क्लर्च से पता चल जाता है कि हम कहाँ के हैं दोस्तों. On dacht dat u gaat zeggen, ik ben geboren in Nederland. U gaat zeggen, ja, ik ben van hier, ik ben van daar. Maar oorspronkelijk, heel veel mensen zeggen, je bent van India. Nee, ja, nou, mijn voorouders wel. En daar mag je zeker trots op zijn, mensen. Zo gaat het toch. U mag het zeker trots op zijn. Toe, Suriname. Zo, aantje maapelijk, zonaenge. Oor, iske baat, hem kia zonaenge, dosto. Au, ik, oor, zona jij met यादगार ऑर्केस्ट्रा इन हॉलैंड टूर की ये जोंग है. एंड इट्स एन हील फील फॉर ओंस कलाकार या सुरनाम के कलाकार कितने इसमें मिल के ये गीत को गाए हैं. और इस गीत इस लाइफ स्टेज सॉन्ग मेंजे. En laten we even gaan luisteren. Het is heel mooi. Met voice of een Virees Uditraan, Nisha Madaren, Auro Amadali, Surinder Sutal, Faris Barsati. En Yadgar Orchestra gestaan. Je giet ko je sub gaiete. Met alles erop en eraan. Chutney masala lagaka raus. Sunajai.

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए नए नए नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। जब अगर सूरीनाम की गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिश राम खिलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिश राम खिलावन इस ऑन से टॉपर, एन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑन से सरनामी हैव गेसोन। लेट्स वे फॉर गाइस टू फ्रॉम क्रिश राम।

और वो कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह। रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत, एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा। तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो दनहाख का है, वो आपको क्या सुनाते हैं, आओ जरा सुना जाए।

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे दरहाख के रबीन बलदेव जी हैं। मैं से वहां नार ओन से फॉलोस्लीट या दैट मुड ओक कीर चक राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है, आओ सुना जाए हमारा श्री नाम।

हिंदी में ये कैसे गाया है या गाया गया है, फौज धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सूरीनाम से फॉलो स्लीट को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जोंग तो सुनाते ही रहेंगे, जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं। हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरिनामी गीत सुनाएंगे।

और वैसे ये है हमारा सुरीनाम। Als je dit soort liedjes heel aandachtig gaat luisteren, mensen, krijg je gewoon kippenvel ervan. Ha, अगर ये कुछ अपना खून में है, अपना शरीर में है, तो ये सब गीत जो है तो आपको झकझोर देते हैं कि हमारा देश सुरीनाम तो अपना ही देश है जहाँ पे हमारा जन्मभूमि हुआ है। लेकिन सब लोग को वो फीलिंग नहीं है, लेकिन जितने लोग के आपको फीलिंग है, तो हम चलते हैं एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह। कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सुरीनाम देश में आए हैं, वो भी एक हम रख देते हैं।

ये पुराना कलाकार है गुरु दत्त कल्ला जिंग का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

वालों को जो भारत से आए थे, आज उनके दुआएं से सुख की हवा चलत है।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपने स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट में से, दैट इज निमत अंदर्स दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दे सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सत्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ऊर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरनाम।

फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहुंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 3 2 तक सेफ नफेटा फाहुंट हिंदुस्तानी रेडियो।

आज का सॉन्ग है और ये है फिल्म के नाम है मिस मेरी की ओर हम जाते हैं।

0: To enjoy ever.
1: और ओ रात के मुसाफिरी चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे। हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशिया बहुत मस्त था ना, तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे। और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं। तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर, क्या हो गया क्या नहीं होगा, तो आओ चला जाए। और वो है आजा सनम।

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नाचिके लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है, और मूवी के नाम है मिस मैरी।

ये मर्द बड़ी दिल जर्द बरी नच जे लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है, दुनिया में मोहब्बत आज भी बरकरार है। क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली। झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग के ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मूवी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो नाइटी मुकेश की आवाज में

Houd de hart op de miljoens, Mukesh. Movie ke naam hai Sriman Satyavati, jisme Raj Kapoor ne kaam kiya hai dosto, aur uske baad to hum chalte hai shayar aur shayari ki mood mein to hum hai dosto, lekin aapko hum kya kya sunayenge kya nahi sunayenge, kehte hai ki ek tarah naam rahe zuban par, एक तरफ नाम रहे जुबान पर और जैसे कि चांद रहे आसमान पर। हा, ये तो खूब है दोस्तों, एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर, ये जिंदगी है दोस्तों। कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो है मूवी के नाम है तकदीर। मूवी के नाम है तकदीर और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है, कभी शराब होता है, लेकिन यहां कुछ और बात है।

बोला बोतल में बंद जवान।

जाओगे, दौड़ तो प्याले फेंक तो बोतल, मेरे पीछे बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो, हाय बोतल में बंद जाओ।

0: अब दरवाजा खोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो
1: और राम बोलो। बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है। दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरेगी तो आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग। मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में। और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

और जब दिन हसीन दिल हो जवान पद्मा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी हो हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टाइल 1958 का पद्माश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

तो चले आओ, तो इसके बाद हम चलते और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है, तो ये हम आपको सुनाते। किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया यू ही नहीं पूरा है, जाता है इक्ष्ट, किसी और को लेना है दोस्तों दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मौफी का नाम है, मौफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती जटले है जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजी जी लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

0: तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नचे लता परमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूवी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं आओ फिर प्यार करें। इसे कुछ लिखा है दोस्तों और
1: आओ प्यार करो,
0: आओ प्यार करो यहां पर लिखा है। तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

फन हंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

गीत अब की बरिश फिल्म क्रांति जो थे एक जमाना में एक समय पे सूरीनाम देश में, और ये बहुत पॉपुलर फिल्म थी दोस्तों, आपको जरूर हम बताते हैं। और इस फिल्म क्रांति जो है इस गीत को आप लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन आज हम फिर आप लोग को सुनाते हैं।

और अब की बरसे भर दे और फिल्म क्रांति का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों जो आप लोग को हमने सुना दिया है। गदर एक मूवी था जो लोग को बहुत पसंद थे और गदर तू भी आ गया है, लेकिन ये सॉन्ग जो है वो है गदर एन का सॉन्ग है।

और आया हो आया दिल का लुटेरा रुस्तक ने वर्ष ga ik vandaag mensen draaien en ja goed dat moet ook een keertje kunnen तो हम चलते हैं और ये है अंजना जोंग 1969 का जिसमें राजेंद्र कुमार बबीता ने काम किया है।

दिल है तो मानता नहीं है दोस्तों, और ये एक दिल है तो वो क्या वो मानेंगे जो किसी से प्यार हो जाता है, तो वो मांगते हैं देखने को, सुनने को, देखने को, चाहने को, छूने को। ये दिल ऐसे ही है दोस्तों।

अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और सोनू निगम अलकायंगनी का ये प्यार भरे लवली सॉन्ग के बाद हम चलते हैं उदित नारायण। उदित नारायण जिस बहुत खूबी से इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए ये क्या है।

0: तो ये लवर्स के लिए है।
1: ऐसे कोई जाने भला ख्वाबों की ताबीर आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी तकदीर से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे कैसे कोई जाने भला फ्रॉम द मूवी तकदीर से द टाइटल। अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हेमंत कुमार जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी प्यासा से हम पेश करते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला।

0: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी प्यासा से हमने पेश किए हैं हेमंत कुमार जी की आवाज में। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले।
1: डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है 5।

0: चले।
1: अभी आप सुन रहे थे आ जाऊं कि तुझे मैं लेके चलूं, किशोरदा आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दूर गगन की छाव में। किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, किशोरदा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किशोर डा की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं,

अभी आप सुन रहे थे किशोर डा की आवाज में घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने।

तीर चल गए। अभी आप सुन रहे थे तुमसे अच्छा कौन है, है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं नहीं, लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे रंगत तेरी सूरत से, किसी में नहीं नहीं, खुशबू तेरे बदन की किसी में नहीं नहीं, फ्रॉम द मूवी तुमसे अच्छा कौन है। इसी फिल्म से हमने पेश की है, लता और मोहम्मद रफी जी मिलकर आपको सुनाने वाले थे। मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, जब मोहब्बत जवान होती है।

अभी आप सुन रहे थे जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जुबान होती है। अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती, मोहम्मद रफी जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बेटी बेटे से।

जाने मन तुम कमाल करते हो, फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हम पेश करते हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुनते यानी सुने हैं जाने मन तुम कमाल करते हो। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह।

मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, भी आप सुन रहे थे। किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी कर्श। आप सुनेंगे मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस का।

अभी आप सुन रहे थे मैं 16 बरस की तुम 17 बरस का गपुची गपुची गम गम।

अभी आप सुन रहे थे गबुची गबुची गम गम फ्रॉम द मूवी त्रिशूल से हमने पेश किए हैं। छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे।

अभी आप सुन रहे थे छोड़ो भी ये नखरा करो प्यार हमसे। एक रोज में तड़प कर बेमिसाल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।